नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 28 षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 28 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1,500 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से अधिक देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि प्रभावित इलाकों से लगभग 1,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न होगी। 57 दिन तक चली यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होगा। इस वर्ष पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से 4,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यह यात्रा पूरी की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। खेलों में हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। वर्ष 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज का चिंतन सुभाष चंद्र बोस का कथन है, जीवन में कोई भी संघर्ष तब तक कठिन नहीं होता जब तक हम हार नहीं मान लेते। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 294। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला ताल प्रवाह, इसका भाग 12 प्रसारित होगा। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की, और इस कार्यक्रम को आप पुनः शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं। भूले बिसरे गीत सुबह 7 बजे और 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। लेखक मिलिंद सबनेस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, इसका भाग 43 प्रसारित होगा। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, संवादक ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादों की महफिल और 1 बजे सुरीला सफर। सदाबहार नग में आप सुनते हैं रोज 2:30 पर, 3 बजे सुनिएगा आज हेलो सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी 11वां सेकंड, लेखन आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे शाम 4 बजे। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर सुनिएगा संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7 बजे। आज 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का भाग 8 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी, कभी ऐसा भी होता है, लेखन निर्देशन गुरुमीत रामल मीत। कार्यक्रम आपके लिए रात्रि 9 बजे। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर रात में आप सुनेंगे ढलती जाए रात कार्यक्रम और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में, आप सुनेंगे सुंदर कांड, आज भाग 294।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार, ताल प्रवाह में बहते बहते हम अंतिम कड़ी में आ पहुंचे हैं। आज मिश्रा जी, हमने तालों पर बहुत सारी बातें सुनी, आपने बहुत खूबसूरत बजाया, आपके साथ उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब ने बहुत अच्छी संगत की, और हारमोनियम पर श्री विनोद पड़गे जी ने भी बहुत अच्छी संगति प्रदान की। इस अंतिम कड़ी में हम तबले के ठेके का एक अलग अंदाज देखेंगे। कहरबा तो भजन के साथ बजता है, भजनी ठेका भी एक है, तो मिश्रा जी इसके साथ किस तरह की ठेका बजते इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आप कह रहे थे कि इसमें कुछ अलग प्रकार के उड़ान या उठान आते हैं, वो क्या चीज है, वो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: भजन का एक ऐसा ठेका है कि आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। आप बहुत अच्छे गायक हैं, मैंने काफी आपके साथ प्रोग्राम भी किया है। मैं चाहता हूं कि अंतिम कड़ी में आप भजन क्यों नहीं सुना रहे, एक भजन गाइए ताकि मैं उसमें अपनी वादन से शुरू करता हूं, और उसमें उड़ान, भजन में एक उड़ान होता है
1: जी,
2: तो वो प्रस्तुत करूंगा। एक भजन कोई गुनगुनाइए आप।
1: कोशिश करूंगा
2: जी।

0: जो भजन का अंदाज है, ये जब कभी बजता है या इसको कहीं गाते बजाते हैं तो जो श्रोता होते हैं ना, वो फिर उसमें झूमने लगते हैं, उसमें रम जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि इसका अंदाज ही एक झूमना। तो श्रोताओं, हम अंतिम कड़ी की तरफ पहुंच गए हैं। जैसा कि प्रारंभ में मैंने गणपति वंदना से शुरू किया था अपने तार प्रवाह का, तो समापन भी हम चाहेंगे कि एक आध्यात्मिक रूप। मुझे आज एक गाना याद आ रहा है, बहुत सुंदर रचना है वो, लता दीदी इसको गाई हैं।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी 12वीं और अंतिम कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस पूरी श्रृंखला में श्री कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दिया उस्ताद फारूख लतीफ खान साहब ने और हारमोनियम पर संगत की श्री विनोद पड़गे ने। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। भोले बिस्तर गीत लेकर बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पूजा नरानिया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये गीत अभी आपने सुना नरसी भगत फिल्म से हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाजों में। जीएस नेपाली का लिखा गीत था, संगीतबद्ध किया था रवि ने।

0: रानी रूपमती इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था SN त्रिपाठी ने।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: क्रूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सती परीक्षा इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। गीतकार दीपक है और संगीतकार सन्मुख बाबू।

पवन पुत्र हनुमान इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। दीपक का लिखा गीत था, चित्रगुप्त का संगीत। ये गीत मदर इंडिया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
4: नसीब इंसान का।
3: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत सलिल चौधरी की बनाई तर्ज पर मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म का नाम लाल बत्ती।

0: पंजाबी है ही। ओए अच्छी पंजाबी पंजाबी अच्छी पंजाबी पंजाबी है ही।
1: हम पंछी एक डाल के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों के स्वरों में। पीएल संतोषी का लिखा गीत था, तर्ज बनाई थी एन दत्ता ने और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया, कार्यक्रम हम हेराही प्यार के। आइए आपको सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व की बधाइयों के साथ सुनवा रहे हैं पहला गीत, बेईमान फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, वर्मा मलिक के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

होशियार फिल्म से आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में अगला गीत। इंडी वर्क के बोल, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: पिया की लाज है।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
1: अरे सुनो,
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। रात और दिन इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: संदेशों से पहले आपने गीत सुना मेरे हुजूर, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। और अब झुक गया आसमान इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है।
3: नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटो कोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है, इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
4: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
2: चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
7: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
8: 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
7: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
2: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
9: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
10: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
11: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
10: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
12: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोट रानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
13: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो, लोकसत्य की सुर्खी है। ब्रेन सर्जरी में पहला एआई सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
2: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, वंदे मातरम। इस रचना की 150वें वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
0: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
1: इस प्रकार सरकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
0: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा, इसका संदेह था। और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है, उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी, उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए। इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

अभी आपने सुना देशगान। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम चित्रलोक।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ इस कार्यक्रम में पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह का ये वक्त है मूड को फ्रेश करने का, दिल को थोड़ा हल्का करने का और दिन को अपनी धुन पर शुरू करने का। तो आवाज थोड़ी बढ़ा लीजिए और जुड़ जाइए विविध भारती के संग। कार्यक्रम है चित्रलोक, शुरू होने जा रहा है।

कार्यक्रम जटलोक का पहला गीत आपने सुना एन एक्शन हीरो इस फिल्म से। जहरा एस खान, अल्तमश फरीदी की आवाजें थी, इंदीवर और तनिष्क बागची के बोल, संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं, आज है 28 अगस्त शुक्रवार और हम मना रहे हैं रक्षाबंधन का पावन पर्व। राखी का यह धागा सदियों से बहने अपने भाइयों की कलाई पर बांधती आई हैं। लेकिन क्या यह धागा सिर्फ बहन की रक्षा का वचन है? शायद नहीं, क्योंकि बहन कोई कमजोर कड़ी नहीं जिसे हर पल किसी की रक्षा की जरूरत हो। यह धागा तो दो दिलों के बीच उस प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है जो कहता है कि तुम्हारे सुख में मैं साथ हूँ, तुम्हारे दुख में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जी हाँ, रक्षा से कहीं अधिक जरूरत है सम्मान की, बराबरी की, अपनेपन की और एक दूसरे का साथ निभाने की। बहन को केवल सुरक्षित रखने का वचन नहीं बल्कि उसके सपनों, उसकी इच्छाओं और उसके अधिकारों का सम्मान देने का संकल्प भी हो आज के दिन। और भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा हो जहां दोनों एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की रक्षा नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये गाना।

0: रक्षाबंधन इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और निहाल तारो की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना थी, हिमेश रेशमिया का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक, और अब वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। द गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत के बोल लिखे हैं गरिमा ओबराह ने, हिशाम अब्दुल वहाब का संगीत पर किया गीत है और आवाजें हैं चिन्मयी श्रीपदा और हिशाम अब्दुल वहाब।

0: श्रोताओं, विश्व संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चूंकि आज है, यह दिवस संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और उसके गौरवशाली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, दर्शन और संस्कृति की समृद्ध धरोहर है।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: मुझे कुछ कहना है इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में, समीर के बोल, अनु मलिक की बनाई तर्ज।

इंद्रनील का लिखा गीत, सचिन जिगर का संगीत, वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म का गीत आपने सुना। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, बता दें आपको कि आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले हैं और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर। और आज है नारियली पूर्णिमा। महाराष्ट्र में विशेष रूप से समुद्र तट से जुड़े समुदायों का महत्वपूर्ण पर्व है नारियली पूर्णिमा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र और भगवान वरुण की पूजा कर नारियल अर्पित किया जाता है तथा सुरक्षित समुद्री यात्रा और अच्छी आजीविका की प्रार्थना की जाती है। लक्की फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वरों में। समीर के बोल, अदनान सामी का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
5: कबीर सिंह इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। इशाद कामिल के बोल सचेत परंपरा की बनाई धुन।

0: श्रोताओं, बलभद्र पूजा मुख्य रूप से भगवान बलभद्र यानी बलराम की आराधना का पर्व है। बलराम जी को भगवान कृष्ण के बड़े भाई और शक्ति, पराक्रम, कृषि तथा धरती से जुड़े जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त बलभद्र जी की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बलराम जी का हल उनका प्रमुख प्रतीक है, इसलिए यह पर्व कृषि, श्रम और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त एक अंतराल का।

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल, इस फिल्म का गीत मीट ब्रदर्स और अल्तमश फरीदी की आवाजों में। शब्बीर अहमद के बोल हैं और धुन बनाई है मीट ब्रदर्स ने।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं पीकू फिल्म से गीत। इस गीत के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार अनुपम रॉय हैं।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं जुग जुग जियो इस फिल्म से। तनिष्क बागची और जहरा एस खान की आवाजें हैं। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची।

जुग जुग जियो इस फिल्म का गीत आप अभी सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बधाइयां और आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हिंदी से दर्शकों के लिए ऋषिकेश मुखर्जी का मतलब है साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में, जिनमें हास्य भी होता है, मनोरंजन भी और कोई सार्थक संदेश भी।
1: मैंने

आम लोगों के लिए फिल्में सपनों का एक संसार होती हैं, और इस स्वप्न संसार को अलग अलग रंगों से रंगना, कुछ नया करके दर्शकों के सामने पेश करना, यही सपना देखा था तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखोपाध्याय ने। साइंस ग्रेजुएट ऋषि दा ने अपने शुरुआती दिनों में गणित और विज्ञान विषय में अध्यापन भी किया, जिन्हें ऋषि दा के नाम से पुकारा जाता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स के साथ, जबकि वो पहले कैमरामैन और बाद में फिल्म एडिटर बने। ये बात है लेट 40s की। उसके बाद वो मुंबई आ गए और यहां आकर निर्देशक बिमल रॉय के साथ बतौर सहायक निर्देशक और एडिटर जुड़ गए। हम बात कर रहे हैं अब 1951 की। उस दौरान उन्होंने बिमल रॉय की माइलस्टोन फिल्म्स दो बीघा जमीन और देवदास के लिए भी काम किया।

1957 में ऋषिदा को स्वतंत्र निर्देशन का मौका मिला। फिल्म थी मुसाफिर। ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन ऋषिदा की किस्मत में तो सफलता लिखी ही थी। तो वो समय भी आ गया जबकि 1959 में उनके निर्देशन में राज कपूर और नूतन अभिनीत फिल्म अनाड़ी ने अपार सफलता अर्जित की।

साथियों, ऋषिदा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा को फिल्म फेयर ने 7 बार अपने अवार्ड से सम्मानित किया। 1956 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड नौकरी, 1959 बेस्ट एडिटिंग अवार्ड मधुमती।

1970 बेस्ट स्क्रीन प्ले अनोखी रात, 1972 बेस्ट एडिटिंग आनंद, 1972 बेस्ट स्टोरी आनंद, 1981 बेस्ट मूवी अवार्ड खूबसूरत, 1972 बेस्ट फिल्म

ऋषिदा ने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी को और पात्रों को महत्व दिया। यही नहीं, उन्होंने हमेशा ही नए नए कलाकारों को अपनी फिल्मों में मौका दिया। जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, इन जैसे कलाकारों ने उनके साथ काम करके अपनी उत्कृष्ट कला पेश की।

0: पोशीदा की फिल्मों में से कौन सी फिल्म छोड़ दी जाए, किसका जिक्र किया जाए, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदी सिने संसार में ऋषिदा का जो योगदान रहा है, उसके लिए सन 2001 में भारत सरकार ने ऋषिदा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1960 में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला फिल्म अनाड़ी को। 1961 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म अनुराधा। 1961 में ही गोल्डन बियर अवार्ड के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई फिल्म अनुराधा। और 1999 में ऋषिदा सम्मानित हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से।
1: मैंने

ऋषि दा का पूरा जीवन फिल्मों के लिए ही समर्पित था। उन्होंने सदा ही अपने दर्शकों के लिए साफ सुथरी, स्वस्थ, मनोरंजन से भरी फिल्में बनाई और अपने चाहने वालों के बीच सदा के लिए अपनी जगह बना ली। 27 अगस्त सन 2006 इस दिन लंबी बीमारी के बाद ऋषि दा का मुंबई में निधन हो गया।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: साथियों, ये था निर्माता, निर्देशक और एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों 28 तारीख को हम मना रहे हैं प्रेम विश्वास और स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल एक धागे का त्योहार नहीं बल्कि ये उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है जिसमें भाई बहन का प्यार छिपा होता है, अपनापन और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। बहन की राखी में छिपी होती है शुभकामनाओं की मिठास और भाई के वचन में होता है जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। तो आइए अपने रिश्तों की गर्माहट को महसूस करें और मनाएं रक्षाबंधन का ये पर्व प्रेम और खुशियों के साथ। शुरू करते हैं सिलसिला हेलो फरमाइश का। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें साझा कर रहे हैं रक्षाबंधन के बारे में, तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल कौन सा है। हेलो फरमाइश,
1: मेरा नाम सिद्धिक हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बताइए सिद्धि जी, तो सारे काम सिद्ध हो गए आपके, सारे सपने?
1: जी
0: बढ़िया है। और क्या काम काज है आपका?
1: जी मेरा लेट मशीन का काम है, मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा, ये लेट मशीन क्या है, मतलब इससे क्या कुछ बनता है, जरा बताइए।

0: डिटेल में?
1: जी मैम, DHL का जॉब होते हैं वो बनाते हैं हम लोग, रेलवे का काम होता है, DHL से आता है तो हम लोग बनाते हैं वो जॉब।
0: अच्छा, तो कटाई वटाई करते होंगे, तराशते होंगे, कटाई वटाई करते होंगे, उसको शेप में देते होंगे ना?
1: जी।
0: बढ़िया, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, मुझे संगम फिल्म का गाना सुनना था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर
0: कि तुम नाराज न होना। तो ये गाना किसी खास के लिए सुनवाना चाह रहे हैं या आप खुद सुनना चाह रहे हैं, पसंद है आपकी?
1: जी खुद सुनना चाह रहे हैं।
0: लिखा कभी किसी को प्रेम पत्र आपने?
1: नहीं
0: लिखा।
1: ये गाना बहुत पसंद आता मुझे इसलिए।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अब सुनवा रहे हैं आपको संगम फिल्म का ये गाना जिसकी फरमाइश आपने की।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं अलंकार मार्केट देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, आपका नियमित श्रोता फार्मासिस्ट मुस्तफा हुसैन बोहरा।
0: जी मुस्तफा हुसैन जी, बताइए क्या हाल है?
1: मैम हमको बहुत अच्छा, आपके आशीर्वाद से। मैम आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया, और आप सबकी आवाजें सुनकर एकदम दुरुस्त हो जाती हूँ। तो मुस्तफा जी बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: देवास में अलंकार मार्केट में मेडिकल स्टोर है, हसन जी मेडिकल स्टोर के नाम से। मेरे पापा जो है प्रोपरेटर है और मैं फार्मासिस्ट हूँ।
0: अच्छा, बढ़िया। तो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कभी ऐसी दवाओं की कोई समस्या होती है कि कोई ग्राहक आकर आपसे कोई शिकायत करे किसी तरह की, ऐसा कभी कोई मौका आया है या कभी अर्जेंट कोई दवा की जरूरत पड़ी हो तो आप?
1: मैम वैसे तो ये सैयदना साहब की बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अभी इससे कोई बहुत कम ग्राहक आते हैं कि जिसको दवाई का सहायता नहीं हुआ या शिकायत की हो। बाकी हम तो
0: आजकल
1: जब भी दवाई देते हैं तो ऊपर वाले का नाम सैयदना साहब का नाम लेके देते हैं कि आप उनको ठीक कर दीजिए ताकि उसको दोबारा दवाई लेने की जरूरत ना पड़े।
0: अरे वाह।

0: क्या बात है, लेकिन आजकल कुछ डुप्लीकेट दवाइयों का चलन आ गया है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जो क्या तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है कि आजकल R&D में F&D में इतने ड्रग डेवलप इतने फॉर्मुलेशन डेवलप हो गए हैं कि एक नाम की अलग अलग बहुत सारी 10 तरह की दवाई आती है।
0: आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जब दवा खरीदें तो किस बात का ध्यान रखें?
1: मैं आपसे और तमाम श्रोताओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई दवाई आप खरीदें उसका बाकायदा लेवल पढ़ के ताकि कौन सा फॉर्मुलेशन आपका है, आपको वो उससे असर करेगा कि नहीं, और उसकी एक्सपायरी डेट जल्दी तो नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट कभी है, कब वो बनी थी, उसकी जो फॉर्मुलेशन मिले हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे पैरासिटामोल, तो उसमें पैरासिटामोल बराबर मिलीग्राम मिला हुआ है, कम ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो हमने को रिएक्शन तो नहीं करेगा, कम मात्रा वाला दवाई रिएक्शन ही करेगी, तो आप कम क्वांटिटी वाले ही मेडिसिन आप दीजिए।
0: जी जी, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं, मरीज आता है बोलता है कि हाँ हमें सर्दी जुकाम खांसी है, कोई दवा है क्या, कोई और सामान लेने आया और ऐसे पूछ लिया, तो जो MR होते हैं मेडिकल स्टोर वाले वो दे देते हैं, कहते हैं अरे हाँ ये दवा खा लो, तो ये भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का फर्ज मेडिकल स्टोर वालों को नहीं अदा करना चाहिए, है ना?
1: जी हाँ, हालांकि कई मेडिकल स्टोर्स पे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखी हो, मेडिकल वाले अपने कमीशन के चक्कर में कुछ और दे देते हैं, तो आपसे तमाम श्रोताओं से तो इतना ही कहूंगा कि भारत के श्रोताओं में जो मेडिकल कराते हैं तो कृपया आप ऐसा ना करें कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वही की वही दवाई दे, तो वो उस पेशेंट के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा और हमारे लिए ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगा जो हम दुकान संचालक।
0: जी जी, मुस्तफा जी हमें बताइए कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन और एथिकल मेडिसिन है इसका क्या भेद है, जरा क्लियर कीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: फर्क तो इतना रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन जो रहती है वो बहुत सारे जगहों में मिल जाती है, और उनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होती है, ना ही उनके लिए कोई MR वगैरह मिलते हैं। एथिकल का तो क्या है कि हर मेडिकल हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है, उनकी मार्केटिंग बाकायदा हो जाती है, उनके MR वगैरह आके मिल जाते हैं।
0: जी तो बताइए कौन सा गाना आपकी पसंद का हम पेश करें?
1: मैम एक्चुअली मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, कई फिल्म उनकी देखी है, उनकी फिल्म आई थी BV No. 1, उसका गाना सुनना है, हाय हाय मिर्ची।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, फोन किया आपने। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम BV No. 1।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं जयदीप अस्थाना इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए जयदीप जी, क्या हाल है आपका और इंदौर का क्या हाल है?
1: इंदौर का बहुत बढ़िया, अच्छा प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी तो, हिल स्टेशन जैसा।
0: अरे वाह, बारिश हो रही है मतलब?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, लेकिन मौसम अच्छा है।
0: इंदौर के पास ये जो एक पहाड़ी पर मंदिर है, बाज बहादुर और क्या है वहां पर, कुछ दर्शनीय स्थल है ना?
1: एक तो इंदौर के अंदर ही एक देवगराड़िया है, और पहाड़ी पर तो उधर मांडव पे है।
0: मांडो, ये पहाड़ी पर जो मांडो है उसके बारे में हमें बताइए,
1: हाँ
0: हमारे श्रोताओं को, कैसे जाया जाता है और क्या है वहां पर?
1: मांडव इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से इंदौर से आराम से कोई भी टैक्सी वगैरह मिल जाती है। वहाँ पे एमपी टूरिज्म के अच्छे होटल्स भी हैं और प्राइवेट होटल्स भी हैं, एक दिन के लिए बहुत अच्छा स्टे है। इंदौर के आसपास ऐसे महेश्वर भी है, उज्जैन भी है, ओमकारेश्वर भी है,
0: जी, देवास भी है ना?
1: देवास भी है, तो ये सभी जगह
0: जी,
1: मंदिर हैं।
0: देवास में पंडित कुमार गंधर्व का निवास है, जो शास्त्रीय
1: हाँ जी
0: संगीत
1: हाँ
0: के
1: जी
0: चाहने वाले हैं वो तो बाकायदा उसे मंदिर की तरह पूजते हैं और वहां जाते हैं दर्शन के लिए। बहरहाल, हम ये जानना चाह रहे
1: बिल्कुल।
0: थे कि मांडो किस लिए प्रसिद्ध है?
1: मांडव पिकनिक स्पॉट के लिए, और वहाँ पे बहुत पुरातत्व महल टाइप का।
0: जी, तो आप अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता था, अभी तो मैंने वाइंड अप कर दिया टोटल। मेरे पास सारेगामा इंडिया लिमिटेड, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, उसकी C&F थी पूरे MP और छत्तीसगढ़ की।
0: अरे वाह, तब तो फिर आपके पास अगर कोई संगीत प्रेमी है तो रिकॉर्ड वगैरह सब मिल जाएगा,
1: हाँ मेरे
0: रिकॉर्ड
1: पास
0: सीडी?
1: बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और मैंने MP और छत्तीसगढ़ के विविध भारती स्टेशन CD वैसे ही खरीदते थे।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो बंद क्यों कर दिया भाई बिजनेस?
1: ये तो मैडम पेन ड्राइव और ये डिजिटल वगैरह आया तो कंपनी ने ही वाइंड अप कर दिया। अभी
0: जी
1: पूरा डिजिटल फॉर्मेट में बिकने या CD कैसेट बिकना ही बंद हो गई, तो कंपनी ने ही वो करा था। मैंने दूसरे बिजनेस भी करे इलेक्ट्रॉनिक में, मोबाइल वगैरह के। अब मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, तो फिर मैंने वाइंड अप कर दिया।
0: चलिए, मतलब बहुत मेहनत कर ली और उसके
1: हाँ
0: बाद
1: जी
0: अब
1: अब
0: आराम
1: आराम
0: का
1: कर रहे
0: समय
1: हैं,
0: बिता रहे
1: आपका
0: हैं।
1: विविध भारती सुनते हैं, अपने रिकॉर्ड सुनते हैं।
0: तो म्यूजिक सुनते हुए फिर गाना भी सीख लिया होगा, क्योंकि म्यूजिक का बिजनेस था तो निश्चित रूप से गाना भी गाते होंगे, तो इस समय
1: हाँ गाने तो मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैं गाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ, अपलोड भी करता रहता
0: तो
1: हूँ।
0: भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमारे श्रोताओं को कैसे पता चलेगा आप जब तक गुनगुना के नहीं सुनाएंगे?
1: सुना देते हैं मैडम, जो गाना मेरी फरमाइश है वही वाला सुना देते हैं।
0: जी,
1: तुमसे मिल के

0: हेलो फरमाइश।
1: जी, मैं अनुप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से। मैं
0: अच्छा
1: ऐसे में मैं बंगाली हूँ, बांग्लाय कथा बोली
0: जी
1: और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी। दो लाइन बोलू मैम।
0: जी जी बोलिए।
1: दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी, दिखाए के शरीफ बनने की आदत
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: हमारी।
1: हमारी।
0: जी क्या
1: सब
0: बात,
1: चाहे जैसे भी हो, खुलेआम बोलते हैं, है ना
0: बहुत बढ़िया। तो ये पंक्तियां आपने
1: जी।
0: खुद रची हैं कि कहीं से किसी की?
1: नहीं, मैं इमिटेट किया है। शब्द
0: जी
1: अच्छा लगता है शायरी, तो
0: जी
1: छोड़ देता हूँ इस प्लेटफॉर्म में।
0: हमें तो बताइए, आपकी
1: जी
0: असम की बात आपने कही, तो असम में रहते हैं या इस समय जो गांव का नाम
1: जी,
0: भी अब?
1: असम में सुनिए ममता जी, हमारे असम में डाइवर्स टू पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम है ब्रह्मपुत्र वैली और दूसरी पार्ट का नाम है बराक वैली। बराक वैली में हम इनहेबिटेंट्स है। हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे बंगाली कम्युनिटी का, बंगाली संस्कृति का धरोहर है। और दूसरी जो ब्रह्मपुत्र वैली है, वो तो लार्ज नंबर ऑफ एसामीज कल्चर है। एसामीज बिहू, एसामीज गाने जो है वो तो अवेलेबल होते हैं। वो बात करते हैं, हम तो बोलते हैं आमी तुम्हाके भालोबासी, वो
0: जी
1: बोलते हैं मोए तुमको,
0: हाँ
1: ऐसे करके क्या बोले उसका जो लैंग्वेज।
0: हाँ और बच्चे को
1: जी
0: शुवाली
1: वाली, जी, आपने सही पकड़े हैं। और हमारे यहाँ पे तो लार्ज स्केल से असम में टी गार्डन, कड़कदार चा, चाय के दर चा, क्या बात है। और वो एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत लाजवाब वो ड्रिंक है। तो
0: जी, कहाँ
1: ममता जी, आज
0: कोई।
1: इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता
0: जी
1: हूँ।
0: बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है सिर्फ तुम और गाने का बोल ऐसे, बंसी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरे दिल रुबा।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार तिवारी।
0: जी प्रदीप जी, बताइए अपने बारे में।
1: मैं रेलवे में कंडक्टर था, एसी में चलता था, भुसावल, नागपुर, झांसी, दिल्ली। अब जो है 8 साल हो गए मैडम, रिटायर हो गया मैं।
0: अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भी आपको सुविधाएं दी जाती होंगी ना सरकार की ओर से?
1: हाँ, सरकार से पेंशन मिल रही है
0: हाँ
1: और सब चीजें मिल रही है। सबसे अच्छा ये रहा कि मैं अपने बच्चों को, क्योंकि ट्रेवलिंग वाला जॉब था तो बच्चों को बड़ा होते नहीं देख पाया
0: अच्छा
1: मैं।
0: अच्छा
1: अब
0: ओ
1: उनके बच्चों को
0: हाँ
1: बढ़ता
0: हाँ
1: हुआ देख रहा हूँ तो पुरानी चीजें याद आ रही थी, यार मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा
0: ओ देखिए
1: होता।
0: ना, जब हम डीसी
1: जी
0: को देखते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता कि आप अपने परिवार को
1: जी
0: छोड़कर इतनी बीहड़ इतनी तकलीफदेह यात्रा भी करते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसका
1: जी
0: भी ख्याल रखना चाहिए। और बाकी सबके लिए
1: जी
0: बर्थ
1: जी
0: होती है सोने के लिए, आप लोगों के लिए बर्थ नहीं होती है। आप बैठ के यात्रा करते हैं,
1: जी
0: एक छोटी सी
1: जी
0: सीट होती है, देखा है। तो अब
1: जी जी
0: यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है और
1: जी जी
0: रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आप कुछ कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पर?
1: हाँ,
0: आपकी बहन की राखी
1: मेरी
0: आई?
1: तीन बहनें हैं, तीनों बहनें जो हैं भोपाल में आ जाती हैं राखी बंधवाने के लिए घर पे, और दिन भर बड़ा अच्छा लगता है मैडम। मिठाई वगैरह जो है बच्चों के लिए ले आते हैं, अब हम लोग तो खा नहीं पाते मिठाई। राखी जो है बच्चों में झगड़ा होता है कि ये राखी अच्छी है, ये मैं बांधूंगी, ये वो, तो बड़ा अच्छा उसे लगता है। 28 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है।
0: जी, फिर तोहफे का आदान प्रदान भी होता है ना कि भाई
1: हाँ
0: कुछ?
1: वो तो मैडम सिस्टर बड़ी है, संपन्न है, तो वो तो एक साड़ी अच्छी दे दो उनको, उसमें मान जाती है।
0: अच्छा जी, रक्षाबंधन पर भाई जो प्रेम से दे वही स्वीकार्य होता है बहन
1: जी
0: को,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अपनी दुआओं की तावीज भी बांधती है राखी के साथ बहन। तो
1: जी जी जी
0: चलिए बताइए, अब कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: राखी धागों का त्योहार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: बंधा

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, मैं
0: नमस्कार
1: भोपाल मध्य प्रदेश से श्रवण सिंह गिन्नारे बोल रहा था
0: जी। बोलिए श्रवण जी, क्या हाल है आपका?
1: जी। बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा फोन लग गया, कई साल
0: जी
1: के बाद लगा है।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल। एक बार क्या इसके
1: हाँ
0: पहले बात हुई थी, पर
1: जी
0: भी
1: जी
0: कई महीने पहले। तो बताइए क्या हाल है अब, भोपाल का क्या हाल है, भोपाल में क्या गतिविधियां चल रही हैं आजकल?
1: कल बहुत बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई कल वहाँ पे
0: ओहो
1: भोपाल में। बाकी तो आसपास के क्षेत्र में सब दूर बारिश हो रही है, सभी पोखर तालाब जितने हैं भरते जा रहे हैं, डैम पानी की कमी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन बड़ा तालाब जो हमारा यहाँ बड़ी झील है भोपाल की बहुत फेमस है, बिल्कुल लबालब है, बिल्कुल इस समय बहुत लहरें उठ रही समुद्र जैसी, वहाँ पे देर से आई लेकिन बरसात आ गई समय से आ गई।
0: जी। तो मुंबई की बारिश ऐसे लगता है कि बाकी शहरों में चली गई है। मुंबई में बारिश नहीं हो रही इस समय, हल्की फुल्की झीसी पड़ती है, बस बंद हो जाती है। हमने सुना है
1: जी।
0: प्रयागराज में भी खूब बारिश हुई, बाढ़ आई है, और शहर के आज तो हेलो फरमाइश में बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उनके यहाँ बारिश हो रही है।
1: हाँ जी,
0: तो
1: पूरे भारतवर्ष में एक तरह से बारिश हो रही है।
0: जी।
1: और मेरी बहने, तीन बहने गई हैं तीर्थ यात्रा पे।
0: अच्छा, तो राखी कैसे बांधेंगी 28 तारीख को,
1: नहीं, आज
0: रक्षाबंधन?
1: आज सभी ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर जो प्रसिद्ध स्थल है खंडवा जिले में,
0: जी।
1: और वहां से कल सभी बहनें हमारी गांव पे आ जाएंगी। हरदा के पास हमारा गांव है, खेती वगैरह है, तो वहां सब बहनें आ जाएंगी और मैं 26 तारीख को चला जाऊंगा। फिर हम
0: अच्छा,
1: 3-4 दिन धूमधाम से रहेंगे, बहनों के उनका स्वागत करना रहते हैं।
0: क्या बात
1: जब
0: है भाई,
1: कोई हमारे यहाँ
0: बहुत
1: तीर्थ जाते हैं तो उनके उनके आने में पूरा परिवार मिलता है, हम मंदिर में उन सब स्वागत करते हैं।
0: अरे वाह।
1: कहा यह जाता है कि पहले जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो लोगों को उम्मीद नहीं होती थी कि वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से बड़ा वो परंपरा चली आ रही है अभी तक। तो नए वस्त्रों से हम उनका स्वागत करते हैं, मंदिरों में वहाँ भोजन करते हैं और
0: अच्छा,
1: फिर उनको
0: वाह
1: घर लेके जाते हैं। जी,
0: वाह वाह। तो
1: गाजे
0: फिर
1: बाजे
0: तो
1: के
0: ये
1: साथ
0: बड़ा अच्छा
1: लेके
0: हो गया,
1: जाते हैं।
0: आप जाएंगे और उसके बाद
1: जी
0: फिर
1: जी
0: रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है, तो राखी भी बन जाएगी फिर तो।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: तो बहनों को इस बार रक्षाबंधन पर क्या तोहफा देने वाले हैं, कुछ सोच रखा है आपने?
1: देखिए, बहनों को तो अब उनकी पसंद की बात करें तो आजकल इतनी ज्यादा मार्केट में वैरायटीज हो गई है, मैं तो नगद राशि और एक लिफाफा देना ही पसंद करता हूँ बहनों को,
0: जी
1: पसंद से जो चाहे ले लीजिए।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: जी
0: और
1: जी
0: बताइए आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: बढ़िया चल रहा है कामकाज। मैं इस समय टूर पे हूँ सिवनी जिले में, ये
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र के बॉर्डर पे सिवनी जिले में, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के लिए आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: और यहाँ से मैं कल शाम को रवाना हो जाऊंगा, परसों
0: हाँ
1: ईद मिलन करके और गांव
0: जी
1: चला जाऊंगा बहनों से मिलने के लिए।
0: जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए हैं, तो मतलब एक तरह से जंगल की सैर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो बड़े घने जंगल हैं और हरियाली बहुत है, हमने देखा है कि महाराष्ट्र के गांव एकदम हरे भरे समृद्ध हैं। तो आपने
1: जी
0: क्या
1: जी
0: देखा,
1: जी
0: बताइए आप।
1: ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं देखने के लिए गया था।
0: हाँ,
1: और
0: श्रवण सिंह के नारे से बात चल ही रही थी और बहुत दिलचस्प बात चल रही थी, तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सतपुड़ा की बात की, सतपुड़ा की पहाड़ियां की। तो श्रवण जी, आपको पता है सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बड़ी मशहूर है और बहुत ही सुंदर कविता है। तो जब भी जंगल में जाए या जंगल की ओर या जंगल के बारे में पढ़े, तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता जरूर पढ़ें। और यहीं पर बातचीत के दौरान श्रवण सिंह के नारे जी

का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बात उन्होंने रक्षाबंधन की है तो हम उनको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन का ये गाना। फिल्म का नाम है अनजाना, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: हम इंदौर से बात कर रहे हैं ममता जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: विशाल यादव
0: जी। विशाल जी, बताइए कौन सी फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरह की, पुरानी नई?
1: मैं पुरानी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, जो क्लासिक रहती है और वही मुझे अच्छी लगती है अधिकतर।
0: मनोज कुमार की और कौन सी फिल्में आपने देखी है?
1: देशभक्ति की तो मैंने सारी देख रखी उनकी, और उनके गाने भी अच्छे लगते हैं मुझे।
0: भाई देशभक्ति की फिल्में बनाई उन्होंने इतनी ज्यादा कि उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया ना।
1: और मैडम जी काफी दिनों से ट्राई कर रहे थे, आज हमारा कॉल हमने बहुत मुश्किल से लगाया
0: जी। तो लग गया है फोन?
1: जैसे संडे के दिन हम जो सुनते हैं ना सुबह, देशभक्ति का जो रहता है,
0: वंदन बार में देशगान आता है, रामचरितमानस होता है, फिर संगीत सरिता, संगीत सरिता के बाद भूले बिसरे गीत, हमें राय प्यार के, चित्रलोक,
1: तो वो भी हमें काफी पसंद आता है वो।
0: अच्छा अच्छा कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं यादगार मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, मनोज कुमार जी की।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता सिंह जी को और विविध भारती की पूरी टीम को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, पूरी विविध भारती की टीम की ओर से दिनेश जी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सर धन्यवाद, आपको रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। विविध भारती के जितने भी श्रोता टीम है, पूरे रेडियो प्रेमी श्रोता प्रेमियों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से बोल रहे हैं आप सोडा जी?
1: ममता सिंह जी, मैं जोधपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ, विविध भारती का नियमित श्रोता।
0: जी, जोधपुर में राखी भाई बहनों के अलावा अन्य रिश्तों में भी बांधी जाती है, हमने सुना है, बताइए।
1: बिल्कुल, आपने सही फरमाया, बिल्कुल। ये एक धागा नहीं है, प्रेम का धागा, प्रेम का रिश्ता, टूट बंधन है ये भाई बहन का।
0: जी जी, किन किन लोगों को बांधी जाती है राखी?
1: भाई को भी बांधी जाती है, बहन को भी बांधी जाती है, मतलब धर्म का भाई भी करते हैं। जैसे किसी का भाई नहीं होता ना, तो मैंने धर्म का भाई भी बनाती है, और धर्म का भाई भी है ना, प्रीत निभाते हैं।
0: भाभी को भी राखी बांधी जाती है, ऐसा मैंने सुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो लटकन वाली राखी होती है, लटकन वाली राखी, लूंगा राखी, यहाँ पे बहुत सारी राखी, अलग अलग वेरायटी की राखी मिलेगी आपको।
0: जी जी,
1: राजस्थान तो मतलब बहुत ही त्योहारों का देश है, त्योहारों का प्रदेश है, और अनेकता में एकता वाला प्रदेश है राजस्थान। यहाँ पत्रों का शहर बनी है, यहाँ के पत्र मशहूर है, पत्रों का शहर बनी है, लेकिन यहाँ के लोग पत्र दिल्ली है। यहाँ आज भी मेहमानों के आगमन होता है, तो आज भी मेहमानों के राव में फूल बिकाए जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेहमानबाजी के लिए मशहूर है, और बहुत
1: नंबर वन।
0: रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं सुबह से?
1: सेवाया बनाते हैं, और बहने आती है, राखी बांधते हैं, और बहन को वचन देते हैं उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन एक रक्षा का सूत्र होता है, बंधन होता है। जब भी बहन पर कोई विपदा आती है, संकट आता है, तब भाई उसके साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परंपरा है कि हुमायूं मुल्क जो कर्मा थी ना, सिपाही जो हुमायूं को राखी भेजी थी, तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और उन्हें सिर काट के दे दिया था।
0: जी जी,
1: और जब भी उन पर लड़ी हुई थी तो वो गए थे उनकी लड़ी में, कर्मावती ने राखी भेजी थी।
0: जी जी, और रक्षाबंधन के दिन एक रक्षा सूत्र आता है, वो तो सभी को, पूरे परिवार में एक दूसरे को बांधा जाता है।
1: आपको पता होगा मैडम, राजस्थान में तो जब खेती करने के लिए हल चलाते ना, उस हल पर भी राखी बांधते, ऐसी भी परंपरा में।
0: बिल्कुल सही बात है, दरवाजे पर भी राखी बांधी जाती है उस दिन तो।
1: ममता जी, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, हर किसी से प्यार नहीं होता। ममता जी, ये तो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
0: जी क्या बात है भाई, और दिल मिलाने के लिए बहुत जरूरी होता है एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखना, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना और उस पर अमल करना।
1: तो
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं मेरी बहन को डेडिकेट करूंगा, कि मेरी बहन का गाना, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी कहना है, हरे राम हरे कृष्णा मूवी का है, किशोर दा की आवाज में, देवानंद पर फिल्म का गाना है।
0: जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। अब आपके जोधपुर शहर में हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्णा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव बेटोड़ा भोयर जिला वाशिम महाराष्ट्र से योगीराज मस्के बात कर रहे हैं।
0: योगीराज मस्के जी, आपकी मनचाहे गीत में भी चिट्ठियाँ आपके नाम की आती हैं,
1: जी
0: तो पत्र भी
1: निरंतर रूप
0: लिखते
1: से।
0: हैं?
1: जी अभी तो पत्र कम हो गए मैडम जी, मिलते कम हैं।
0: आपको बता दें, विविध भारती में पत्रों की संख्या फिर वैसी ही हो गई है।
1: लोगों ने लगभग बहुत हद तक श्रोताओं द्वारा बहुत ही प्यार दिया गया है विविध भारती को।
0: जी बिल्कुल सही बात है, और उस प्यार को फिर आंखों पर लिया है विविध भारती ने। तो मस्के
1: जी
0: जी, जरा बात पत्र की चली थी, तो बताइए, पत्र लिखने की परंपरा अब जैसे कम हो रही है, तो क्या
1: जी
0: आप किसी को पत्र लिखते रहे, पहले लिखते रहे अपनी बहन को,
1: जी
0: भाई को?
1: लगभग श्रोताओं से जुड़ा हुआ पत्रों से ही शुरू हुआ था, तो वो सिलसिला आज कम हो गया है। जैसे श्रोताओं के लिए फोन वगैरह का, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, इसी कारण से कम हो गया। नहीं तो रेडियो केंद्र हुए और विभिन्न विधाओं में आज भी खत लिखे जाते हैं। मैं तो
0: जी
1: लिखता हूँ
0: जी बिल्कुल, और खास मौके पर तो पत्र लिखना ही चाहिए, जैसे रक्षाबंधन है।
1: खास मौके पर तो निरंतर लिखे जा रहे हैं, लिख भी रहा हूँ। खतों का मिलना दूभर हो रहा है, बस बड़ी दिक्कत से मंगवाने पड़ते हैं दोस्तों से।
0: जी जी, ग्रीटिंग की परंपरा थी, ग्रीटिंग अपने हाथ से बना के भेजे जाते थे, कुछ अलग ही
1: ग्रीटिंग भी
0: समय।
1: थी बाद में, शुरुआती समय में तो मुझे याद है 75 पैसे का अंतर्देशीय आया करता था।
0: और वो ग्रीटिंग जब आते थे तो ग्रीटिंग को बहुत समय तक अपने टेबल पर और स्टडी में सजाया जाता
1: मैंने
0: था
1: तो
0: ना?
1: लगभग संजोए रखा हुआ है। वो तो ये बात है कि खत एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ भाव तो छोड़िए, पर वो उस आदमी का फिल्मों में दिखाया जाने वाली बात नहीं है, पर सच में आदमी दिखता था। अगला जो भी व्यक्तित्व है, हम जिस व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तित्व हमें सीधे हमसे रूबरू होता था खत के द्वारा।
0: जी जी जी
1: जी तो आज फिल्म का नाम है हीना और गीत के बोल है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए।
0: बहुत बढ़िया गाना चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मस्के जी। अब बातचीत को दे रहे विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अम्बेडकर चौक खोरई जिला सागर से आपका नियमित श्रोता राम सखी परमानंद बोल रहा हूँ मैम।
0: जी परमानंद जी, बताइए क्या हाल है आपका?
1: बड़ी काम कर बड़का
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पिक्चर का नाम हिमालय की गोद में और उसके गाने के बोले चांद सी महबूबा हो।
0: जी मुकेश की आवाज़ में ये गाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक कृपया वे हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड है 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: गूंद लिए, हंस के दिल तोड़ दिए, अश्क शबनम के बहे और खामोश रहे। हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचलती हुई बुलबुल ने कहा।
1: क्या
0: जाते जाते

मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में आपने सुनी अभी ये कव्वाली। इसके बोल लिखे थे शेवान रिजवी ने और संगीत तैयार किया था इकबाल कुरैशी ने।

0: कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। अब जो रचना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें स्वर है चित्रा सिंह का, संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने और इसके बोल लिखे हैं सईद राही ने।

चित्रा सिंह की गाई इस गजल के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा गीत। इसकी धुन तैयार की है निखिल विनय ने।

मेरी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दलेर मेहंदी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं एल्बम तुनक तुनक तुमसे ये गीत, जिसे तैयार की, इसकी धुन तैयार की है रवि पवार और दलेर मेहंदी ने, और शब्द रचना भी दलेर मेहंदी की है।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने ये गजल सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया इस एल्बम से आलिशा चिनॉय की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल आलिशा चिनॉय और श्याम अनुरागी के हैं। संगीत की धुन तैयार की है बिद्दू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल जिसे हमने लिया है जिगर से जिगर तक इस एल्बम से। स्वर हैं महेश चंदर और कविता कृष्णमूर्ति के, शब्द रचना जिगर मुरादाबादी की और संगीत से धुन तैयार की है महेश चंदर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी
1: कार्यक्रम

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी
0: तो विमलेश जी, शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री।

0: सेल्सियस।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है। और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
1: इसे श्रोताओं, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
0: जी
1: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
0: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
1: जी हाँ, तो विमलेश जी, जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
0: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है। इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
1: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
0: जी
1: छायादार आंगन, हवादार कमरे
0: जी
1: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
0: जी
1: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
0: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी
1: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
5: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सिधार जाऊं।
5: पिताजी, ऐसा ना कहिए,
4: अभी आप

0: का जीवन बहुत लंबा है।
1: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
2: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? न खेत है और न कोई दूसरा काम।
0: जी
1: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
2: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
1: बेटा धीरेन्द्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थायी नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
2: जी।
1: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
2: जी पिताजी।
1: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
2: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
3: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
4: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
2: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
5: भला वो क्या?
4: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
2: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
3: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
2: भाई प्रताप,
4: मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
6: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेन्द्र?
5: जी भैया आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
3: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
7: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
8: हाँ,
7: आपका ऊंट खो गया है ना?
8: हाँ मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
9: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
7: महाशय हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
9: है?
7: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
9: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
7: नहीं नहीं,
9: अरे
7: नहीं,
9: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
7: अरे महाशय हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
9: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
7: नहीं,
9: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
7: वो
9: महाशय, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
7: लेकिन
9: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
7: क्या
9: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
3: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
9: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय हमारी बात सुन ले। महाशय
9: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, आप चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
3: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
9: अब तुम सब राजा के पास चलो।
7: महाशय
9: महाशय चलो, मैं तो काट के रख दूंगा। चलो
10: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊँट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
7: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊँट का मुंह तक नहीं देखा।
1: तुम्हें कैसे पता कि ऊँट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं।
10: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं, तो ऊँट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
1: तुम लोगों को कुछ कहना है?
8: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
1: अच्छा, तो ये बात है
8: जी।
1: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
11: जी महाराज।
3: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
1: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
7: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
2: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
3: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
6: खाइए खाइए, लीजिए।
8: महाराज,
6: धन्यवाद।
3: फिर पूछा,
1: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
8: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
2: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
7: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
1: वाह, बहुत खूब।
3: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
1: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊँट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
2: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊँट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊँट बड़ा है।
1: क्या बात है?
8: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
1: अच्छा,
8: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
1: जी, बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊँट एक आंख से ही देख पाता है?
7: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
1: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
2: धन्यवाद
8: महाराज। शुक्रिया महाराज।
1: मैं सचमुच चकित हूँ।
8: जी महाराज।
3: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
12: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपने

0: अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी, सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहाँ खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
5: धन्यवाद।
4: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
6: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
7: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
7: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
7: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: सही बात।
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
3: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ, सरला तुम बताओ।
3: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
4: बहुत अच्छे सरला।
3: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
5: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
1: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
8: 1000 घंटे की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
5: I'm so excited.
8: महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपने ऑफिस में।

0: लैंडिंग फ्री।
1: कमाल,
2: थैंक यू।
3: बहुत सर लगी,
2: थैंक यू, धन्यवाद।
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
5: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
4: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
6: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य

0: 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है, जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: उमंग, उमंग, उमंग।

अगला फिल्म अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

अब आपको हम सुनवा रहे हैं जिंदा दिल फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में लेकर हम आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सफर में आपके साथ है पूजा नारानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन तो हम ही करते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा काम आप सभी करते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए कार्यक्रम के गीतों की झलक साझा करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों यानी इबारत से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे साथ ही आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुना देते हैं आज की इबारत जो आपने फेसबुक पेज पर पढ़ ली है, लेकिन कुछ श्रोताओं के लिए इसे पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। रूह और सरगोशी, एक अनकहा संवाद, आज ये हमारी इबारत में शामिल है। रूह कहती है कि क्यों आज फिर इतना दीवाना सौदाई सा मन है, कितनी वर्षों की तन्हाई लेकर बैठा है यह दिल। काश कोई राह ही मिल जाए, कोई आहट आ जाए तो शायद मन थोड़ा बहल जाए। सरगोशी कहती है, देखो सामने काली घटा के साए उतर आए हैं, शायद इन्हीं पर लिखना है कोई अफसाना अधूरा सा, जिसमें छुपा हो मेरी आहों का धुआं और उन आहों में किसी के लौट आने की उम्मीद। तो रूह कहती है कि कभी सोचा था मोहब्बत

में इतना कुछ मिलेगा, पर जो मिला उसके बदले में प्यार के प्यार दिया है। अब बताओ किसी टूटे हुए मन का सहारा कैसे बनूं, जब खुद ही किसी सहारे की तलाश में हूं। सरगोशी कहती है, आंखें बंद करो, शायद दूर कहीं सूरत मीरा मोहन की सी कोई छवि ठहरी हो। उस एक पल की रोशनी से तकदीर रोशन हो जाए तो फिर किस बात की शिकायत। रूह कहती है, लेकिन ये मन भी अजीब है ना, कभी पुरवैया बांध चलाए, कभी मन को अपनी दिल पसंद पनाहों में छुपा ले, और कभी पलकों की पखियां बनकर किसी अनकहे सपने को सहलाने लगी। सरगोशी कहने लगी, शायद इंतजार की यही तो सजा है। जब आंखें तरस गई हैं तो हर आहट किसी अपने की लगती है, हर स्पर्श में एक सवाल उठता है, और उंगलियां किसके प्यार की है छूती, और दिल चुपचाप उस जवाब को सुनने लगता है। रूह कहती है, क्या सचमुच कोई सुन रहा है? सरगोशी कहती है, सुन रहा।

तो श्रोताओं, रक्षाबंधन का पर्व है तो सबसे पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं ये। बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ श्रोताओं, अंधा कानून फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। रक्षाबंधन पर्व है, इसलिए इस गीत से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोतागण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिल बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतजार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उससे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और साथ ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सांत्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है। जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो, पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल है, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है, वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत। आज जी ये हमारी श्रोता कह रही। हमारी अगली श्रोता कह रही है कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतजार करती है और यही इंतजार कभी अकेला नहीं छोड़ता। लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है। और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत को किसने लिखा है ये बताइए।

0: पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की

0: एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारी एक श्रोता कहती है कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि साले की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार प्यार मोहब्बत तन्हाई बेचैनी किसी के आने की आहट मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही हैं इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की स्पंदित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफूसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कने एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है। तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार, यहां सबको मन मुताबिक कुछ नहीं।

में बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी,

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोशीला से, बताइए किसने गाया है। पर्दे पर्दे किसने गाया है ये भी जरूर बताएं।

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आरजी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमीन को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं, पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आप ही बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, यह दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं, सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

एक श्रोता कह रही है कि रूह के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्योहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार है। एक श्रोता कह रही हैं कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्योहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्योहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा लिए, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीतबद्ध किया है इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी, क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है। पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात, आज रक्षाबंधन की मिठाइयां मिलने वाले नेग उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही है, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है, तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही है, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है। इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीजा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही है कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है, जब मन और रूह की आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नारानिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।
1: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है, इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
0: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
1: इस प्रकार प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए, इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
0: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा, इसका संदेह था। और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है, उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
1: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी, उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थी। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए। इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृति नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेश

0: आरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि हाथ के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIR News हिंदी और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमरीका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज़। शैलेंद्र के बोल।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायर उद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार खयाम।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली पनी हारी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास की बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, ही राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहां पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए ये गाना, फिल्म सारंगा।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार, और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए, और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है?
1: बहुत ज्यादा मैडम जी।
0: अच्छा दक्षिणा जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं भी घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं?
1: हाँ जी।
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं या पति हैं?
1: हाँ जी, पति हमारा, दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी मेरा साया फिल्म का।
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका जीरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ, जिला
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: हिसार, उकलाना मंडी।
0: अच्छा, बताइए आप
1: जी
0: क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम, हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में कौन से काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में?
1: सबसे मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी।
0: अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला, आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं।
1: सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, भुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब
0: ये सब सर बारिश के
1: जी।
0: पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
1: जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के मैम, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नागपंचमी नहीं थी, नागपंचमी 17 तारीख को, तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नागपंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन।
0: और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं?
1: जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए, और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं।
0: तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है?
1: जी भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है रक्षाबंधन के लिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं? कर्नाटका
1: मैं दिया माँ मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। मैं
0: की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहां घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है। मैं
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मैं
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम। तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से।
2: तुझे ना

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
0: कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल चलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम।
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना,
0: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।
1: जी मैम,
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है।

0: तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं, कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ, मैं थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ, बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं, बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: मैम रिमझिम बरसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैम,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जी
1: हाँ जी नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं?
0: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम।
1: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
0: जी मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
1: हाँ जी सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
0: हाँ जी मैम मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम।
1: जी
0: जी मैम और मैं बैचलर हूँ मैम। मैं
1: अच्छा
0: बैचलर हो चुकी हूँ जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
1: जी
0: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
1: अच्छा आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
0: मैंने अवधी लोक गीत गाए थे मैम।
1: तो आज हमें सुनाइए अवधी लोक गीत।
0: जी मैम।

0: अरे राम सावन बीता जाए सजन नहीं आए रे हारी। जी मैम, मैंने यही गाया था।
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: जी
1: मुझे बताइए नीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैम, मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: दीदी,
1: जी
0: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
1: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
0: जी,
1: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
0: दुकान पर वो तो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
1: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में।
0: दीदी
1: अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
0: मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है। जी
1: सेहतनामा अच्छा लगता है।
0: जी जी
1: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
0: जी जी जी
1: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
1: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
0: इसे समझो ना रेशम की डोर मैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
1: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं धनेश्वरी मठरिया बोल रही हूँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं धानेश्वरी
1: मैं
0: जी?
1: भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
0: जी
1: मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही आप ना?
0: हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और
1: मैं
0: आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे, और बातें तो की नहीं। अपने बारे में
1: हाँ
0: बताइए हमें।
1: मैं हाल

0: हूँ, घर में
1: हाँ
0: रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं।
1: जी
0: मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस।
1: हाँ,
0: हाँ, अब
1: आर्मी
0: मुझे
1: से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे शहरों
0: जी
1: में आप रही होंगी।
0: हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे।
1: तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं।
0: जी, फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं।
1: अच्छा, और इतने सारे शहर जब आपके पति देव का तबादला होता रहा, तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
0: अच्छा, तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है,
1: जी,
0: बहुत अच्छा लगा था।
1: और आपके क्या क्या शौक हैं?
0: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है,
1: हाँ,
0: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके।
1: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
0: जी, मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर सिटी होता है ना,
1: जी
0: तो उसपे मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
1: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
0: ये मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं।
1: जी, आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत
0: हाँ,
1: सुनवाएं आपको?
0: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
1: आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं? फातिमा
1: फातिमा मनियार,
0: जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: नासिक महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ,
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें प्लाजो भी होते
1: जी
0: हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं और भी कई तरह
1: मैम,
0: की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी बहन जी, सिर्फ
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है,
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: तो मैं हाउस वाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता, महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूजे बिस्तरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर
0: जी
1: 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे श्रोता जिन्हें संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: हाँ मैं तो लिखती हूँ, कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना,
0: जी
1: तो क्वेश्चन के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देते हैं कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ जैसा कि मैं अपने पीआर से काफी दूर हूँ, मेरा पीआर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ,
0: तो जब
1: तो
0: राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही समझे याद आ जाता पियर तो, और रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना। तो मैं जो चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं यह गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदा रे भैया सुनके है ना, भैया सुनके है ना, बहना याद करे ओ चंदा रे।
0: भगवती जी आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का SCD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। एक और नंबर है 28670288, मुंबई का SCD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि सातवां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन कई बार होता है ना, जब आप चीजों को जाने बगैर भी उन्हें बहुत गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि पिछले 30 मिनट से मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं यमुना के किनारे पर नहीं, उसी सातवें आसमान पर बैठी हूं। मतलब हद होती है भाई, पता है, एक तो मैं यहां पूरे आधे घंटे से सड़ रही हूं, ऊपर से मेरा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है, यानी सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए समय काटने का भी सहारा नहीं है। उस पर सितम ये कि इन बंदरों के डर से पिछले 30 मिनट में 36 जगह बदल चुकी हूं। मुझे मालूम था यहां का हाल, इसीलिए मैंने कहा भी था कि यमुना की क्या पड़ी है, कॉफी हाउस में मिलते हैं ना। पर नहीं, जनाब तो जिद करने लगे, नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो, कहां कॉफी हाउस की किचकिच और कहां नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहां सुकून मिलेगा।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहाँ, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्रो सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई ये रहा तुम्हारा रूमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई। अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के 2-4 कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे

लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पक कर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूँ जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खींच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा। कोई है जो उसे समझाए कि सुकून नदी के किनारे नहीं, टाइम पर आने से मिलता है। एक तो ये जो कंधे पर बैग के नाम पर किताबों का पिटारा लादकर चलता है ना, उसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कॉलेज में तो समझ में आता है, पर यहाँ यमुना किनारे अपनी दोस्त से मिलने आते समय तो उस बेताल को छोड़कर आया जा सकता है ना। और मत छोड़ो, कम से कम जल्दी से उठाकर चल तो दो। कोई एक किताब कम रह जाएगी तो कंधा उठाने से मना नहीं कर देगा, पर नहीं, मुझे मालूम है यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूँ उसको। रवैया ही ऐसा है उसका। ज्ञान तो ऐसे

बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो। पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है, सच बोल रही हूं। फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं, पर अब और नहीं। मैं यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूं क्या जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहाँ मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़े स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिनभिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद, उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत करते हुए लहजा बदला। अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था, एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था, और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़-कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच हंसनी जैसी एक सफेद नाव तैर रही थी। उस छोर के मंदिर में कोई गा रहा था। लग रहा था जैसे वो आवाज भजन के वो सुर लहरों में घुलते जा रहे हों, या इन नावों की गति बनकर पानी की सतह पर हौले हौले सरक रहे हों। मैं हैरान रह गई। सुकरात, अब से बस कुछ पल पहले भी मैं यही थी, इसी जगह पर, लेकिन तब नदी के पास बिखरा ये सारा जादू मुझे छू भी नहीं पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तुम जी कहां रही थी? मैं हंसने लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी, पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर

0: तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वही छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।
1: कहीं

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहाँ एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

पूरे साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूट घूट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहाँ बैठे थे वहाँ सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

की इन बातों से जाने क्यों मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा, हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूं। क्या करूं?

और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मूड में आई। अरे यार क्यों सता रहे हो, लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा ये लो, उसने चार्जर निकाल कर मेरी ओर बढ़ाया। लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं अभी नहीं, वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज लो। फिर वही मारक मंत्र। चिड़ को साइड में रख कर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात, उसने पूछा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस, उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना, और कोई ऑप्शन है मेरे पास, मैंने कहा। अच्छा भाई इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कहा। क्या पर क्यों, वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दे। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, उसने चहक कर कहा। मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई मुझे तो माफी करो, तुम पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ, डांट खा खा कर अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था। उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम हम दोनों

वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दी, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थी, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहाँ नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसल कर जा रहे इस लम्हे में है सिया। मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को अपने आकाशवाणी ओबरा के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही भाई बहन के प्यार और अटूट बंधन के पर्व रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ये शुभ संध्या, आज का ये अवसर हमारे लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि जीवन की वो याद है जब हमारी मिट्टी ने अपनी आवाज पाई थी। 28 अगस्त साल 1993 का वो दिन जब आकाशवाणी ओबरा ने अपनी यात्रा शुरू की। वो शाम केवल एक प्रसारण की शुरुआत नहीं थी, पूरे अंचल के सपनों, उम्मीदों, सांस्कृतिक गौरव की सुबह थी। ओबरा की धरती ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आवाज जनपद सोनभद्र के अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों में गूंजेगी और जन जन तक पहुंचेगी।

साल 1993 28 अगस्त की वो तस्वीरें अभी भी आंखों में ताजा हैं। दूर दूर से गांव के लोग देखने आए थे, कुछ पैदल कुछ साइकिलों पर। सबकी आंखों में चमक थी, सबके चेहरे पर उत्साह था जब उद्घाटन की ध्वनि बजी और रेडियो पर पहली बार ओबरा की आवाज गूंजी तो कई आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा आज ओबरा सचमुच पहचान में आ गया, किसी ने कहा अब हमारी बारी, हमारी बोली, हमारे गीत, हमारे खेत, हमारी खुशियां और हमारे दुख सब आकाशवाणी के माध्यम से सब तक पहुंचेगा।

नदी किनारे बसा हुआ ये नगर केवल अपनी विद्युत परियोजना और प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि उस आवास के लिए भी जाना जाता है जिसने यहाँ के लोगों को जोड़ कर रखा, वो आवास जिसने गांव-गांव तक, जन-जन तक संदेश पहुंचाया, जिसने घर घर में अपना पन जगाया, वो है आकाशवाणी ओबरा, जिसे आप हर रोज सुनते हैं FM 102.7 पर, और साथ ही अब आप न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुनते हैं, जुड़े रहते हैं।

दोस्तों, जनपद सोनभद्र की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को एक धागे में पिरोने का काम आकाशवाणी वर्षों से करती आ रही है। ये महज एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि उस जनमानस की आवाज है जिसने यहाँ की संस्कृति, कला और संगीत को सोनभद्र की सरहदों से निकालकर देश दुनिया तक पहुँचाया। इसी सोच और उद्देश्य के साथ जनपद सोनभद्र में आकाशवाणी ओबरा केंद्र की स्थापना भी हुई थी और आज आकाशवाणी ओबरा का स्थापना दिवस केवल गौरव का दिन नहीं है बल्कि पीछे मुड़कर देखने, अपनी यात्रा को महसूस करने और उन सभी के प्रति कृतज्ञ होने का अवसर भी है जिन्होंने इस सफर को अपनी मौजूदगी का अर्थ दिया। 33 वर्षों की यह यात्रा समर्पण, संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी है। इसके साक्षी रहे हैं हमारे अधिकारी, कलाकार, यशस्वी जन और सबसे बढ़कर हमारे वे श्रोता जिन्होंने आकाशवाणी ओबरा को न सिर्फ सुना बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना लिया। साल 1993, जब तकनीक आज जैसी तेज नहीं थी, गांव में पुराने रेडियो सेटों से खबरें और गीत घरों तक पहुंचा करते थे। बिजली हर जगह और हर वक्त नहीं होती थी, इसलिए बैटरी से चलने वाला रेडियो ही लोगों का सच्चा साथी होता था। बल्कि कह सकते हैं कि कई घरों में रेडियो ही टाइम का माध्यम यानी रेडियो ही घड़ी की तरह काम करता था। ऐसे समय में जब लोगों ने सुना कि उनके अपने इलाके में आकाशवाणी केंद्र होगा तो उन्हें लगा जैसे कोई अपना बहुत दूर होते हुए भी बहुत करीब आ गया है। कोई है जो उनके अपने मन की बात कहेगा, उनके मन की बात सुनेगा, कोई है जो सीखेगा भी, सिखाएगा भी।

0: और अब यादों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस केंद्र को नजदीक से देखा, इसे बनते और बढ़ते महसूस किया। हमारे साथ हैं उस दौर के कार्यक्रम अधिशासी श्री करुणा शंकर दुबे जी, जिन्होंने आकाशवाणी ओबरा की नींव रखी और इसे जनता से जोड़ने का कार्य किया। आइए अब उनका अनुभव सुनते हैं।
1: पूरे परिवार को हमारी ओर से नमस्कार। आकाशवाणी का मेरा कार्यकाल 28 जून 1992 से 4 नवंबर 1995 तक का रहा। अचानक कानपुर केंद्र की कुछ ऐसी आवश्यकता हुई कि मुझे अचानक जाना पड़ा। उस समय यहाँ पर जो है, चूंकि ये भारत सरकार का एक उपक्रम के रूप में शुरुआत हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का एक पहला केंद्र है आकाशवाणी ओबरा। पहला केंद्र इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका मुझे गर्व है, क्योंकि ये 6 किलोवाट का ट्रांसमीटर था और इसकी फ्रिक्वेंसी 102.7 मेगाहर्ट्ज उस समय, और ये उत्तर प्रदेश का एक तरह से नॉन लोकल रेडियो स्टेशन था। ये अन्य केंद्रों की तरह से नहीं था, क्योंकि ये अलग परिस्थितियों का केंद्र था। जैसे मीडियम वेव के स्टेशन खुलते हैं, तो उस तरह का ये केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव था। और तो जो मुझे दायित्व तो दिया गया था, वो उस दायित्व से शुरू करते हैं। ओबरा आकाशवाणी मेरा आगमन हुआ तो आकाशवाणी की दीवारें बन रही थी, बैठने के कोई स्थान भी तय नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 1992 की। मैं मूलतः बनारस करने वाला, मुझे 2 घंटे में ही बस मिल गई और सीधे ओबरा में बिल्ली गांव के पास। और उतरने के बाद जो है, मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि भैया यहाँ कोई आकाशवाणी है? तो उसने कहा कि साहब सुने हैं कि बाजा वाला स्टेशन खुलने वाला है। तो मुझे उससे ही आभास हो गया कि लोगों में ये सुनगुन है, कुछ होने वाला है। हमने कहा कि तुमको ये कैसे पता चला कि बाजा वाला स्टेशन है? कहा कि आजकल टावर कसा रहा है, तो मैं ये समझ गया कि हमारा टावर लॉन्च होने वाला है। खुली हुई मैदान थे और घास खूब ऊंचे हमारे बराबर की घास थी। और फिर जो है, मैंने आईओ जो थे सलीम अहमद साहब, मैंने कहा कि घास को पहले कटवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ सांप बहुत रहते हैं, यहाँ अजगर भी रहते हैं। ओबरा में इंस्टॉलेशन का काम भी पूरा नहीं हो पाया था। बाउंड्री वाल तो आनंद फानंद में तैयार हो गया। आनंद फानंद में तैयार होने की स्थिति आप जानते हैं क्या हुआ, कि वो एक ही बारिश में गिर भी पड़ा, इसे फिर से बनाना पड़ा। मिस्टर कलीम अहमद साहब हुआ करते थे और इंस्टॉलेशन अफसर हुआ करते थे, प्रोग्राम के रूप में मैं था। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो परिचय हुआ वहां पर, जो तकनीकी विभाग की जो व्यवस्थाएं बन रही थी, उन व्यवस्थाओं में मिस्टर कार्तिक बैठा, उसके बाद सरोज राय जी आए। धीरे धीरे नियुक्तियां होती गई, कुछ स्थानांतरण पर आते गए। सबसे बड़ी दिक्कत थी कि स्टाफ आ रहा था और हमारे ही बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो बाकी को हम कैसे बैठाते। धीरे धीरे जो है, हमारे कदम बढ़ते गए और प्रगति की ओर हम चलते गए। मेरे बाद जो है, मिस्टर आर के गोविंद राजन साहब आए। उसके बाद हिमाचल से जो है, शिमला से बहुत कोशिश में थे जीपी निराला जी, उसके लिए हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास किए, वो यहाँ पर आ गए। लेकिन वो स्टेशन शुरू होने के बाद आ पाए। स्टेशन को शुरू करना था, शुरू करने की तिथि जो थी वो 1992 ही रखी गई थी। लेकिन हमारे साथ जो समस्या थी कि हम चाहते थे कि इतना बड़ा केंद्र बन रहा है, केंद्र निदेशक क्यों न हो हमारे पास। केंद्र निदेशक के रूप में रामपुर आकाशवाणी केंद्र से मिल रहे थे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज थी।
0: वाकई दुबे जी की बातें सुनकर सहज ही महसूस होता है कि जुनून और हौसला हो तो किसी भी कमी को ताकत में बदला जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे पहले दिन लोक कलाकारों की टोली आई, कैसे गांव से लोग दौड़े दौड़े चले आए। बात जनपद के गौरव की थी, बात सूचना और साधन की थी।
1: ये सोनभद्र कितना संपन्न क्षेत्र रहा है, और इसमें संपन्नता में जो हमारी बाधाएं रही कि हमारे पास रेगुलर या नियमित उद्घोषक नहीं थे। और जब हमारे पास निदेशक आ गए, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उद्घाटन से पहले उद्घोषक का चयन किया। और उससे पहले महानिदेशालय ने हमको जो दायित्व दिया कि आप कैजुअल्स की भर्ती की प्रक्रिया करिए, तो हम और डॉक्टर संतोष मिश्र दो लोग मिल करके और पूरी ओबरा परियोजना की निगरानी किए, और निगरानी करके जो भी बच्चा ग्रेजुएट था उसके घर जा जा करके माता पिता से कहे कि यदि आपका बेटा क्योंकि हमारे पास कोई माइक्रोफोन नहीं था
0: बिल्कुल
1: कि
0: बिल्कुल
1: हम पब्लिसिटी कर लें कि आपका बेटा बेटी अगर कोई है तो एक सादे कागज पर, क्योंकि हमारे पास कागज भी नहीं था, हमारे पास बैठने की तो कुर्सी तक तो थी नहीं, तो हम जो है लेटर प्रिंट के जो बॉक्स आते थे एक बॉक्स पर जो है पेपर बिछा करके बैठते थे और एक बॉक्स जो बड़ा होता था उसको टेबल बना लेते थे और उसी पर हमारा स्टाफ बैठता था, हमारे अधिकारी बैठते थे। दूसरी चीज थी कि हमारे पास गाना बजाने के लिए LP रिकॉर्ड नहीं थे। महानिदेशालय हम लोग भी चिट्ठी लिख रहे हैं, डॉक्टर संतोष मिश्रा भारती से आए थे, मैंने उनको जिम्मेदारी दी। उसके बाद जो है जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे जो ग्रेजुएट लड़के थे, बोलना चालना भी सिखा दीजिए। शुरू में कहा गया कि अभी एक ट्रांसमिशन की शुरुआत करनी है, वो शाम को चलेगा 5:30 बजे चलेगा और रात को 10:30 बजे बंद हो जाएगा, 11 बजे नहीं 10:30 बजे तक। कार्यक्रम में जो है कृषि का कार्यक्रम हार्डकोर नहीं होगा, क्योंकि हार्डकोर कृषि के लिए वैज्ञानिक हम कहां से लाएंगे। उसी समय जो है अजय शेखर जी ने हमारी समस्याओं को ऐसे सुलझाया कि मैंने दूसरी समस्या भी उनके सामने रख दी, वहां के दुकानों में FM रेडियो सेट रखवाना, क्योंकि भाई हम पूरा परोस देंगे और परोसने के बाद उसको खाने वाला न हो तो फिर हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बता दीजिए यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं सब में FM रेडियो हो जाएगा। हमारे स्टेशन इंजीनियर जो है राजेंद्र बाबू को स्टेशन इंजीनियर ही कहता था, मैंने कहा कि उनको मैं कह दूंगा कि टेस्ट ट्रांसमिशन हमारा शुरू करा दें, क्योंकि ओबरा परियोजना में मुझे कुल मिलाकर के 50 लड़कियां 25 लड़के मिले होंगे। उद्घाटन जिस दिन हुआ 1993 में हुआ 28 तारीख को अगस्त का महीना था। अर्जुन दास केसरी आप समझिए कि आकाशवाणी के उद्घाटन के दिन शाम को उन्होंने कर्मा नाच करवा दिया था आकाशवाणी कैंपस में, पूरी पूरी कैंपस में कर्मा डांस। उद्घाटन के समय जो है केवल आकाशवाणी परिवार था। गोविंद वर्मा जी जो स्टेशन डायरेक्टर अब वो रहे नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने नारियल को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो है सारे लोगों पर वो उसके जल को छिड़का और अच्छे से हुआ ट्रांसमिशन। फिर आप समझिए कि निराला जी तब आ गए थे और निराला जी ने ट्रांसमिशन का काम संभाला और उन्हीं के प्रभाव से दिन का भी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। हमारे एक सहयोगी और पहुंच गए थे तो तीनों ट्रांसमिशन शुरू हो गए थे। ओबरा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को मजबूती से रखे रहा, जबकि और केंद्रों की स्थिति देखी जाए तो और केंद्र उतने मजबूती से नहीं चले जितना मजबूती से ओबरा केंद्र चल रहा। उसके लिए जो है ओबरा के रहने वाले और ओबरा के साहित्यकार और ओबरा के जो भी हमारी टीम है प्रसारणकर्ता जो जितने भी हैं, ये हम नहीं कहते कि कोई कैजुअल होता है, सभी यूजुअल होते हैं। वहां की मिट्टी इतनी मजबूत है, वहां की मिट्टी पत्थर है, मजबूती से जकड़ी हुई है, पड़ी हुई है, तभी लोग जो है एकदम मजबूत होकर के प्रसारण कर रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, लोगों में धैर्य भी है। ओबरा ने वो सब चीज किए हैं जो कि एक नियमित स्टेशन करता है, क्योंकि वो नियमित स्टेशन बना ही था। ये अलग बात है कि वो घाटी में भी हो करके अच्छे फूल खिलाती है, अच्छी चीजें देती है।
0: रेडियो ने किसानों को तकनीक सिखाई, बच्चों को सपनों की उड़ान दी, महिलाओं को आत्मबल दिया और कलाकारों को मंच दिया।

0: यही वजह है कि आज भी जब कोई किसान हल चलाते समय कहता है, अरे भैया रेडियो ने बताया था इसीलिए तो इतनी अच्छी फसल हो पाई है, ये सुनकर वाकई गर्व होता है। कभी कभी लगता है कि रेडियो कोई यंत्र नहीं बल्कि घर घर का सदस्य है। रेडियो बोला तो दिल से बोला, हर मन से उसका नाता जुड़ा, कभी खेतों में गूंजा कभी चौपालों में, हर घर में बसा जैसे माँ की गोद में। आज समय बदल गया, तकनीक बदल गई, मोबाइल आ गए, इंटरनेट भी आ गया, लेकिन आज भी आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित कार्यक्रमों की गूंज वही है, उसका भरोसा वही है। आकाशवाणी ओबरा आज भी समाज की आत्मा है, लोगों की धड़कन है और संस्कृतियों का संगम है। इस स्थापना दिवस पर हम उन सभी को नमन करते हैं जिन्होंने आकाशवाणी ओबरा को अपने पसीने अपनी मेहनत से बनाया, उन अधिकारियों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसे जनता का साथी बनाया, उन कलाकारों का आभार करते हैं जिन्होंने अपनी कला से इसे जीवन दिया, और सबसे ज्यादा हम आप श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आकाशवाणी ओबरा को अपना परिवार बना लिया और हमें अपना साथी समझा।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
8: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
8: ध्यान रहे यह अस्थाई और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
8: आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 118 रूपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 89 रूपए यानी कि 89 रूपीज निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें।

0: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान। युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। दोस्तों, कुछ रिश्ते नाम से पहचाने जाते हैं, कुछ खून से और कुछ सिर्फ एहसास के माध्यम से। रक्षाबंधन इन्हीं एहसासों का पर्व है। एक ऐसी डोर का त्योहार है जो कलाई पर बंधती है, मगर उसका सिरा कहीं बहुत भीतर तक जाकर दिल से जुड़ जाता है। और इस बार 28 अगस्त की तारीख अपने साथ एक खूबसूरत संयोग लेकर आई है। एक तरफ तो हम आकाशवाणी ओबरा के स्थापना दिवस की यादों से जुड़े हैं और दूसरी तरफ रक्षाबंधन का यह पावन पर्व। देखा जाए तो हम दोनों ही तरफ एक बंधन से ही तो जुड़े हैं, फिर चाहे वो आवाज की दुनिया हो या फिर एहसास की। जैसे तारीख ने हमें यह याद दिलाया हो कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज वही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, रिश्ते, अपनापन और विश्वास। राखी का धागा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि शायद हथेली में भी पूरा ना आ पाए, मगर इसमें बंधी यादें बहुत बड़ी होती हैं। याद करिए बचपन के वो दिन जब बहन राखी लेकर भाई के पास बैठती थी, माथे पर तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी और फिर बड़े प्यार से कलाई पर धागा बांध देती थी। और भाई भी कहां कम होता था, राखी बंधते ही जेब टटोलता था, जैसे लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी जेब में रखी हो। कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो कोई छोटा सा तोहफा ही सही, मगर बहन के चेहरे की मुस्कान देखकर लगता था कि त्योहार पूरा हो गया। वक्त बदलता गया, बच्चे बड़े होते गए, घर बदल गया, शहर बदल गए और कई बार तो दूरियां इतनी बढ़ गईं कि राखी के दिन भाई की कलाई तक बहन के हाथ पहुंच नहीं पाए। लेकिन रिश्ते कहां दूरी मानते हैं। कभी डाक से भेजी हुई राखी पहुंचती है, कभी रेडियो के माध्यम से भावनाएं पहुंचती हैं, कभी कुरियर के छोटे से पैकेट में और कभी वीडियो कॉल पर बहन स्क्रीन के उस पार बैठकर राखी दिखाती है और भाई अपनी कलाई आगे कर देता है। तकनीक ने शायद राखी बांधने का तरीका बदल दिया, लेकिन उस धागे का मतलब आज भी वही है कि कोई है जो आपके खुशी में खुश हो रहा है, कोई है जिसे आपकी चिंता रहती है, कोई है जिसके लिए आप चाहे कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, फिर भी घर की एक कलाई पर आपकी जगह हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का पर्व नहीं बल्कि उन तमाम रिश्तों को महसूस करने का भी दिन है जिनके सहारे हम और आप अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं।

तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम, आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कार्यक्रम युवावाणी से अब आशीष वर्मा को दें अनुमति। सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी ओपरा से।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं घरनी कार्यक्रम।

बहन लोगन के गौरी के राम राम। बहन लोगन का हाल समाचार बा, अपन बैठ के देखें। आज एक बार फिर लग गई और हमारे लोगन सही समय से जुड़ भी गई नहीं जा। और सुनाओ आप लोगन की का हाल समाचार बा, सब कुशल मंगल बा ना। त्योहार के देखें सिलसिला अब तो शुरू हो चुकल बा। आज तो सावन पूर्णिमा है और आज रक्षाबंधन है। तो कुछ बहन लोगन तो देखा गई हुई है राखी बांधे अपने भाई के कलाई पर, और कुछ भैया लोगन अपने बहन से राखी बधवावे आयल भी हुई हैं। जौन बहन लोगन के इतना इंतजार रहेला ये पर्व का, ये मौका का। तो का होला कि जब शादी हो जाला, अगर दूर शादी हो जाला तो बहन लोग दूर हो जालिन, कभी कभी विवश भी हो जालिन। ऐसे में भैया लोग अगर आ जाला तो एकदम जौन मन मयूर नाच उठेला। बहन लोगन देखा राखी यानी रक्षाबंधन कई त्यौहार जौन होला भाई बहन के पवित्र प्रेम का निशानी है। ए दिन के देखा ये त्यौहार के इंतजार बेसब्री से भाइयों के रहेला, बहन के भी रहेला। आ ये रिश्ता का देखा मुख्य विशेषता है कि निस्वार्थ प्रेम। आजकल निस्वार्थ प्रेम खाली भाई बहन में ही देखे के मिलत है या माता पिता में। भाई बहन के देखा प्रेम का कोनो भी तरह का शर्त या दिखावे से देखा ये दूर रहेला। अब बचपन के साथी वो होलन एक दूसरे के साथ, बड़ होलन जैसे उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनल रहेला। सुरक्षा और समर्थन देखे भाई अपन बहन का ढाल बन करके उनके रक्षा का वचन निभावेला, और बहन भी देखे भाई के सफलता लंबी उम्र का कामना हमेशा करेलिन। और नोक झोंक तो देखा चलबे करेला, नोक झोंक मस्ती, छोट छोट बात पर झगड़ना और फिर तुरंत ही मान भी जाना, ये देखा रिश्ता का ही पहचान है। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन का सुगंध, बारिश

बहन लोगन देखा, अब आगे आप लोगों से बात बत कही तो करब, लेकिन आज है इतना बढ़िया पवित्र त्यौहार भाई बहन के रिश्ता का, रक्षाबंधन। तो हम लोग तो आप शामिल है ही, जब बैठकी में बातचीत हम लोग को होबे करी, तो हम तो कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक मनसाइन सुनल जा। भोजपुरी फिल्म है, फिल्म का नाम है बिहारी बाबू, और आवाज़ है अलका याग्निक मनोहर उदास का। तो पहले हम लोग एक राखी वाला, रक्षाबंधन वाला गीत सुनल जाए।

0: बहिन लोगन इतना अच्छा हम लोग गीत सुनी है जा बहिनी बसेलू तू हमारा परनवा में आवाज रहल है अलका याग्निक मनहर उदास का और हम लोग सुन ली है जा। अब देखा आज जब रक्षाबंधन और राखी के बात होते हैं तो यही संबंधित जानकारी बा आप लोग सुने हमू सुने। राखी के रंग महिलाओं की आत्मनिर्भरता के संग सावित्री प्रजापति से अपन सुरसई द्विवेदी बहन बातचीत करत है आवे जानकारी पहले हम लोग सुन ले जाए।
1: बहनों, प्रधानमंत्री जी का स्वप्न महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विशेष पहल और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने घरेलू कामकाज से थोड़ा समय निकालकर श्रीमती सावित्री देवी आज अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ना और अपनी पहचान बनाना कितना आसान, कितना मुश्किल, कितने उतार चढ़ाव से भरा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज आकाशवाणी में आप स्वयं मौजूद हैं। तो सावित्री जी नमस्कार।
2: नमस्ते, मेरा नाम सावित्री प्रजापति है।
1: तो सावित्री जी, हम सबसे पहले आपके शुरुआती चीजों से शुरू करते हैं कि आप समूह से कब जुड़ी और जुड़ने से पहले आपकी जो दिनचर्या थी, जिंदगी थी, वो कैसी थी और जुड़ने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आया?
2: इस समय तो हमारा बहुत अच्छा परिवर्तन आ चुका है और समूह में हम 2021 में जुड़े हुए थे
1: जी।
2: उससे पहले हम एक किसान परिवार से थे और गांव से ही, बस गांव की एक लड़की या बहू गांव में ही सीमित थे जी। और जुड़ने के बाद समूह से हमें बहुत बहुत फायदा हुआ और बहुत सारा काम करने का हमें मतलब शौक मिला। और उस शौक को पहले तो हम बहुत पहले ये सोचते थे कि हमें कुछ करना है और हम कर नहीं पाते थे क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था और किसी से पहचान भी मेरी नहीं थी। लेकिन जब समूह में हम जुड़े हैं तो हमें पहचान भी मिलना शुरू हो गया है और पैसे का आमदनी भी शुरू हो गया है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप समूह में जुड़ के कुछ उत्पाद बना रही हैं
2: जी,
1: क्या क्या बना लेती हैं?
2: समूह में जुड़ करके पहले तो हम प्रशिक्षण लिए
1: जी।
2: पहले तो हम कुछ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानते थे, जैसे अचार बनाना, नमकीन बनाना, उसके साथ साथ गुलाल के बारे में। राखी का बहुत शौक था कि भाइयों के कलाई पे ये पवित्र धागा बांधी जाती है, तो सीजन सीजन पे हमें

0: बहुत अच्छा लगा कि हम राखी बनाएं। सीजन सीजन पे जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, उस हिसाब से हम काम करना शुरू कर दिए।
1: देखिए, बड़े अच्छे मौके पे आपने बात करी राखी की।
0: जी
1: तो आपने त्योहार में अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग चीजें बनाई।
0: जी
1: इस समय सावन में
0: जी
1: आपने राखी का जो मन बनाया है,
0: जी
1: कितने वर्षों से राखी बना रही हैं?
0: ये 1 साल पहले से बना रहे हैं हम राखी। और जैसे
1: अच्छा।
0: कि राखी में अभी 15 अगस्त बीता हुआ है, तो तिरंगा राखी का भी हम लोग के पास मांग डिमांड हो जाता है कि कुछ तिरंगा राखियां बनाई जाए। तो हम तिरंगा राखी का दिमाग में ला करके तिरंगा राखी भी बनाते हैं। और भाइयों के लिए ये पवित्र धागा बांधने के लिए हम तरह तरह की राखियां बनाते हैं।
1: देखिए, जैसे मौके की बात है,
0: जी
1: आपने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे जैसी राखी बनाई।
0: जी
1: अभी जो राखी बना रही हैं आप
0: जी
1: राखी पर्व के लिए
0: जी
1: ना,
0: जी
1: तो उसमें भी तो कई तरह की राखी बनाती
0: बिल्कुल,
1: होंगी, कैसी
0: जैसे
1: कैसी?
0: कि रेशम के धागे से, उसमें मोती से पिरो करके बनाते हैं, कुछ ऊन के द्वारा भी बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: जी ऊन से भी राखी बनाते हैं और कुछ मोतियों से हम बनाते हैं। और यह हमारी राखी बहुत ही पसंद की जाती है
1: तो
0: इसको।
1: आप बताइए कि भांति भांति की राखियां बना रही
0: जी
1: हैं, तो राखी बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लेती हैं?
0: जैसे कच्चा माल हम लोग बनारस से जाते हैं, कभी भी गए तो जानते हैं कि ये सामान हमारा सीजन आ रहा है और हम गए बनारस से ले लेते हैं, नहीं तो अपने हम रावष्टगंज से ले लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा जी। तो आपको जैसे कई तरह की राखी बनाती होंगी,
0: जी
1: कुछ हल्की होती होगी, कुछ
0: जी
1: विशेष होती होगी,
0: जी
1: तो अगर एक खूबसूरत राखी आप बनाती हैं
0: जी
1: तो उस पर लगभग कितना खर्च और कितना समय लगता है?
0: जैसे कि एक हम ऐसे तो राखियां बनती हैं, जैसे कि हर लेवल के लोग आते हैं, गांव के
1: बिल्कुल।
0: हिसाब से भी और शहर के हिसाब से भी आते हैं। तो एक अच्छी राखी बनाने के लिए हम लोग को 10 से 15 रुपए का बनता है और मात्र 10-15 मिनट लगता भी है।
1: आपकी
0: जी
1: ये बताइए, जो राखी की न्यूनतम
0: जी
1: खर्च
0: जी
1: और अधिकतम खर्च जो है
0: जी
1: दोनों तरह की,
0: जी
1: तो कम
0: जी
1: से कम कितने का बनाती हैं और अधिक से अधिक कितने तक का बनाती हैं?
0: जैसे कि हम राखी बना रहे हैं तो राखियां तो बहुत सारी बनती हैं, एक दो राखियां तो बनाते नहीं हैं, कि कम से कम हमारा 20,000 या 10,000 इस तरीके से राखियां बनती हैं। उस हिसाब से मेरा बचत भी उसमें हम कर लेते हैं और उसमें हमारा खर्च जैसे ज्यादा होता है उस हिसाब से हम बचत करना निकाल लेते हैं। क्योंकि अधिक से अधिक बनाते हैं तो हम लोगों का लागत जिस हिसाब लगता है, हम लोगों का 10,000 का ला रहे हैं तो कम से कम 30,000-40,000 का तो हम लोगों को
1: आमदनी होना चाहिए।
0: आमदनी हो जाता
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात है, आप इतना समय देती हैं, श्रम
0: जी
1: करती हैं, तो आप इस मुनाफे की बेशक हकदार हैं।
0: जी
1: आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि लोग लेते हैं, दुकान
0: जी
1: पे जाता है, कोई विशेष जगह बताइए जहां तक आपकी राखियां जाती हैं?
0: जैसे कि हमारी राखी बनती है, जैसे अभी तो नहीं गई है लेकिन हाँ,
1: पिछले
0: ये
1: वर्ष?
0: पिछले साल हमारी राखी जो है प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजी गई थी,
1: वाह,
0: मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजी गई थी।
1: बहुत
0: और
1: सुंदर।
0: हमारे डीएम सर हैं, हमारे विकास भवन में मेरी राखियों को बहुत सुंदर मतलब बता करके वहां भी मेरी राखी बांधी गई थी। और इसके साथ साथ हम लोग रेणुकूट में राखी लेकर के गए थे, वहाँ फौजी लोगों को भाई बना करके हम लोग राखी मतलब बांधे थे उनको। बहुत अच्छा
1: बहुत।
0: लगा था कि हम अपनी राखी हम कहीं भेज रहे हैं और कहीं इतने ऊंचे लेवल पे हम लोग बांध भी रहे हैं भाई के
1: ये
0: लिए।
1: तो कितनी मतलब ये तो एकदम बहुत ही खूबसूरत अनुभव है ना,
0: जी
1: कि आपकी एक छोटे से गांव की बनी हुई राखी
0: जी
1: और हमारे प्रधानमंत्री जी के कलाइयों पर सज रही
0: जी
1: है, ये आपकी बहुत अच्छी पहचान है। तो ये तो बांधने की बात हुई ना,
0: जी
1: पर अपनी बनाई हुई जो राखियां हैं
0: जी
1: उन्हें बेचती कैसे हैं? ग्राहक इनसे कितना संतुष्ट रहते हैं?
0: ग्राहक तो बहुत अच्छा संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि हमारी राखी हम लोग गांव से निकल करके शहर में दुकानों पे जा करके अपनी एक दो राखियां पहचान में दिखाते हैं कि मेरी ये राखी बनी हुई है, तो लोगों को पसंद आती है। तो कुछ अपने ही गांव की महिलाएं आकर के हम लोगों को ऑर्डर दे जाती हैं कि इतना हमको चाहिए। कुछ शहर के जो गांव हैं दुकान वाले वो कह देते हैं कि हमें 1,000 राखी चाहिए। कुछ लोग इस तरीके से हमारी राखियां बिक जाती हैं। और जैसे हम लोग होता है क्या कि हम लोग स्टॉल जो है लगाते हैं, उसमें हम लोगों को राखी का स्टॉल लगता है, उसमें हमारा राखी पूरा बिक्री हो जाती है एक
1: कहाँ
0: अच्छी।
1: लगता है स्टॉल
0: ये
1: ये?
0: जैसे स्टॉल लगता है हमारा विकास भवन में लगता है, सरस मेला के हिसाब से लगता है, और भी जैसे जगहों पे लग जाता है वहाँ हमारी राखी जली जाती है। मेरी राखी जो बंधी हुई होती है, ये हम लोग यहाँ तो स्टॉल लगाते ही हैं। हमारी राखी लखनऊ जाती है, विकास भवन में जाती है, विवेकानंद में लगती है, दिल्ली तक जाती है हमारी राखियाँ।
1: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करती हैं और आपका जो राखी इससे जुड़े अन्य उत्पाद हैं वो सब समय से एक अच्छे मुनाफे के साथ निकल जा रही है। आप ये बताइए
0: जी
1: कि त्योहार के इस सीजन में
0: जी
1: आपकी कितनी तक की कमाई हो जाती है?
0: जैसे 50-60 हजार जी इस सीजन हमारी राखी में। जैसे कि हमारी राखी हम लोग जितना अधिक से अधिक बनाते हैं उस हिसाब से, जैसे कि अगर हम मान लीजिए 10 हजार राखियां बना रहे हैं तो हमारा कम से कम 30-40 हजार रुपए तो मेरा बचत हो जाता है।
1: लागत कितनी लगती है?
0: लागत वही 10 हजार से 15 हजार।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए हमारी आपकी बात हमारी बहनें सुन रही हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी बहनें हैं जो सुबह के काम काज और शाम के काम में जुड़ने से पहले दोपहर में थोड़ा समय निकालती हैं
0: जी,
1: और जब ऐसी बातें सुनती हैं ना तो वो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं या समूह से जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी?
0: हम बहनों को यही कहना चाहेंगे कि वो सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएं, और उसमें तरह तरह की बचत भी किया जाता है और वहाँ से लोन भी दिया जाता है, CCL से मिलता है, ग्राम संगठन से मिलता है, समूह से CIF मिलता है, बहुत सारे पैसे ऐसे मिलते हैं जिसे छोटे छोटे उत्पाद करके वो अपने को पैसा कमा सकती हैं।
1: और सबसे अच्छी बात कि प्रशिक्षण भी मिलता है।
0: और सबसे अच्छी ये बात है कि निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है उनको।
1: जी जी जी। और प्रशिक्षण के बाद आप अपनी रुचि के हिसाब से अपने उत्पाद चयन करती होंगी?
0: जी बिल्कुल, खाना पीना बना लेती हैं महिलाएं, उसके बाद जो है अपना काम कर सकती हैं। ये
1: देखिए सावित्री जी, एक छोटे से गांव से निकलकर
0: जी
1: और अपनी रुचि
0: जी
1: अपने विवेक और अपने इच्छा के हिसाब से आपने एक उत्पाद चुना, त्योहारों पे उसको बनाना शुरू किया और एक मोटी कमाई के साथ अपनी एक अमिट छवि आप बहनों के बीच में बना चुकी हैं, और आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आई हमारी श्रोता बहनों को समय निकाल कर समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित की इन सभी बातों के लिए।
0: मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम पहले सोचे थे कि मेरी कोई पहचान नहीं बनेगी, लेकिन आज मुझे अच्छा लगता है कि मेरी एक पहचान बनी है गाँव से शहर तक। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम भाइयों के लिए राखी तो बना रहे हैं कम से कम।
1: बहुत अच्छी बात है, तो आपने इतना अच्छा समय दिया
0: जी,
1: बहनों को सलाह दिया
0: जी,
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बहन लोगों ने हम लोग संदेश सुन ली है जा, उससे पहले जानकारी सुन ली है जा, राखी के रंग महिलाओं की आत्मनिर्भरता के संग श्रीमती सावित्री जयम प्रजापति से अपन जो सुरसई द्विवेदी बहन बातचीत कर ली ना, इतना अच्छा जानकारी मिला हम लोग के, इतना अच्छा जानकारी हम लोग सुन ली है जा, इन लोग के धन्यवाद दिया जा और एक मन साइन के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हम कुछ कहल चाहब कि अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम, आवे जाना जा कि अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम का है। बहन लोगों देखा, अल्पसंख्यक 15 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शुरू कैल गई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे मान लें कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं का समुचित उपलब्धता, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य है कि उपेक्षित वर्ग का बचपन गर्भवती महिला का संपूर्ण विकास, और दूसरा का है देखें विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता के सुधारना। तो एमन है कि सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और ऐसा तमाम योजना अल्पसंख्यक समुदाय के घरी जनसंख्या वाले गाँव क्षेत्र में स्थापित कई जाए, एक ये उद्देश्य है। और देखें तीसरका के उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन, तो उर्दू भाषा के अध्यापक लोगों को भर्ती तन ज़्यादा से ज़्यादा कही जाए। और देखें चौथा है मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी के लिए मैट्रिक पूर्व मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बनावल और ओके कार्यरूप दिहल, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना के उन्नत कैल, गरीबन के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापन के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन गंदी बस्ती की स्थिति में सुधार, असाम्प्रदायिक घटना का रोकथाम, असाम्प्रदायिक अपराध के लिए अभियोजन, मैंने जे लोग सांप्रदायिक दंगा मैंने भड़कावे लोग उन लोग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे के चाहे में देर न हो। और सबसे बाद में है सांप्रदायिक दंगन के पीड़ितन का पुनर्वास, यानी अगर सांप्रदायिक दंगा के पीड़ित लोग हो तो उन लोग तत्काल राहत दिया जाए एवं एकदम देरी न होके के चाहे। बहन लोगों ये जानकारी हम लोग सुन ले रही है, जब बातचीत हुई आप लोगों से आगे, लेकिन हम तो कहब कि अब इन लोग एक धन्यवाद दिल जा एक भोजपुरी फिल्म के साथ। फिल्म का नाम है कि लागी नाही छूटे रामा, आवाज़ है लता मंगेशकर, प्रोडक्शन है जगदीश शर्मा और निरहुआ इंटरनेट। अब आवाज़ सुनल जाए हम लोग।

बहिन लोगन गाना सुनत रही है, मन कर लागी नाही छूटे रामा भोजपुरी फिल्म रहा है और आवाज रहा है अपने लता मंगेशकर बहन का, और कितना बढ़िया हम लोग का याद जुड़ल है गाना से। तो यही के साथ देखे अब बैठ के समेटे का समय होता, लेकिन उससे पहले चला चलाओ तो आप लोगों से कहब कि बच्चों में अपने समानता हमेशा रखे के चाहिए हम लोग के। असमानता का मतलब है कि जाति धर्म लिंग आर्थिक स्थिति या भाषा के भेदभाव के बिना प्रत्येक बच्चों के विकास शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान के समान अवसर मिले, और सब बच्चों के साथ साथ जो बचवा बचिए में फर्क पड़ेला भेदभाव होला उसे आप लोग के अब बचे के चाहिए, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के शिक्षा के सबके अधिकार है उनके मिले के चाहिए। यही के साथ आज के बैठकी बस यहीं तक, तो सब बहन लोगों के राम राम।

जो तो अभी आप सुन रहे थे घरनी कार्यक्रम आकाशवाणी के हम उभरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6 बजने को है। अब सुबह थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से अनुप्रसारित भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति असाना। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार उत्साह के साथ मनावल जा रहा हो। ये मौका पर बहिन अपने भाईयन के कलाई पर रंग बिरंगा राखी बांधेलिन और उनके समृद्धि स्वास्थ्य और कल्याण बदे प्रार्थना करेलिन। भाई अपने बहिन का रक्षा और सहायता का वचन दे लें। लखनऊ में आयोजित बिटिया और बहना यूपी का गहना स्नेह बंधन कार्यक्रम में छात्रा लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राखी बांधलिन। ये मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि डबल इंजन का सरकार बेटियन का सुरक्षा सम्मान शिक्षा और
1: आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की रोजगार में भागीदारी अब 36% से अधिक हो गई है। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं को सहयात्री के साथ रोडवेज और नगरी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार बेटियों को हर क्षेत्र में समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार कक्ष से अरुण।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 बरिस पूरा हो गया हो। ये देश में वित्तीय समावेशन का तस्वीर बदलने की दिशा में खास पड़ाव हो। एगो रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचक्के आए विनाशकारी बाढ़ में मरे वालन का संख्या बढ़ के 469 हो गई बा और सीमा के दोनों ओर 1545 लोग लापता हवे। नेपाल का सुरक्षा कर्मी प्रभावित चलन से 800 से बेसी लोग इनके सुरक्षित जगहिन पर पहुंचो हवे। एगो रिपोर्ट।
4: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है। इससे बचाव कार्य में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन की सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूल क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया।

0: किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: इन्वेस्ट यूपी में नियमन के सरलीकरण का दुसरका फेरा के प्रगति का आज लखनऊ में समीक्षा कल गई। केंद्र और राज्य का सीनियर अधिकारी लोग कारोबारियन आ लोगिन पर अनुपालन का बोझ कम कैले आ कई गो मंजूरियन का प्रक्रिया तेज कैले पर जोर दिया। बैठकी का अध्यक्षता केंद्र सरकार का कैबिनेट सचिवालय का विशेष सचिव के पाठक कैले। एमए कैबिनेट सचिवालय का अतिरिक्त सचिव राहुल शर्मा मौजूद रहा। बैठकी में खाद्य लाइसेंस, श्रम कानून, वस्तु और सेवा कर, अग्नि सुरक्षा, भवन स्वीकृति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और बिजली कनेक्शन से जुड़ल प्रक्रिया के सरल बनौले का समीक्षा कैल गई। अधिकारी लोग कहले कि नियम जरूरी बा बगैर अनावश्यक बाधा ना ही बने के चाही। समीक्षा बैठकी में प्रदेश की ओर से इन्वेस्ट यूपी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद, माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव किंजल सिंह और राजस्व विभाग का सचिव दिव्या मित्तल के सतही और यो अधिकारी शामिल भइले। सावन महीना के आखिरी दिन ने आज प्रदेश भर के मंदिरन और शिवालयन में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ रहल। काशी में भोरवे से श्रद्धालुओं का लम्हर कतार लागल रहल। वहीं अयोध्या में श्रद्धालु सरजू नदी में आस्था का डुबकी लगौले और पुरान नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कैले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हमारे दिल्ली केंद्र से करेंट अफेयर्स कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर। म्यूजिक गैलरी, आपके ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 10 से। अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत। 6:50 का समय फिल्म संगीत के कार्यक्रम का रहेगा। 7:05 पर आप सुनेंगे लोक गीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे डॉक्टर मन्नू यादव और साथी।

सरप्राइज कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। रात 8 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से। इसके अलावा रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और रात 9:15 का समय रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें आपकी ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का समय रहेगा रात्रि 10 बजे का।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। श्रोताओं, आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 6:10 हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: राव भैया देखा तोहरों के राम राम और पंच भैया लोगन के भी राम राम हो।
0: राम राम भैया, पंचायती के भैया देखा डुगडुगी बजल और का गठरी में गठीले हुआ भैया खोला।
1: भैया देखा गठरी में तो बहुत कुछ होला, काहे कि हर जब पंच भैया लोग जुटे लन तो हर तरह के बात सुने के मिला। लेकिन देखा आज अपन पंचायती के शुरुआत करे खातिर सबसे पहले हम तो ये कहते कि पंच भैया लोगन के रक्षाबंधन के त्योहार के बधाई बा, और ओकरे साथे साथे देखा हम लोगन के जौन ओबरा आकाशवाणी के स्थापना जौन 28 अगस्त 1993 के हो रहे ओकरो दिवस आज बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतना बढ़िया जानकारी भैया देखा मिलल, और निश्चित रूप से भैया देखा आकाशवाणी के अपने अंचल में भैया देखा जौन विकास में कहा जाला कि भैया देखा योगदान बहुत ही काफी रहले, और लोग जौन बाकी तरह तरह के कार्यक्रम सुन करके उ हिसाब से अपने विकास के गति के आगे बढ़ेलन। और निश्चित रूप से भैया देखा आज भी भैया देखा हम लोगन लगातार आकाशवाणी के माध्यम से हर तरह के कार्यक्रम सुनत है और गुनत भी है। और निश्चित रूप से भैया देखा रक्षाबंधन के बात भइल तो भैया देखा हम लोगन आज देख ली कि भैया देखा हर तरफ भैया देखा काफी भीड़ भाड़ रहले,
1: उत्साह रहल
0: बिल्कुल, और हर बाजार हाट और चौराहे पर भैया देखा भीड़ भाड़ देखल गईलक, मिठाई के दुकान और राखी के दुकान भी देखल गई, और यही में भैया बहनी लोग भैया देखा राखी खरीदत रहलन, मिठाई खरीदत रहलन, और बहुत ही उत्साह के साथ भैया देखा अपने भाई लोगन के रक्षा बंधन के त्योहार पे भैया देखा राखी बंधन और शुभकामना भी दिलन भैया।
1: तो भैया देखा यही बात के साथ हम लोगों के तरफ से भी शुभकामना बा, और लेकिन देखा हम लोग अब पंच भैया लोग जुटी गई लेवन और कुछ भैया लोग जुटत होवन
0: बिल्कुल,
1: तो हम तो ये कहते कि हम लोगों के हर ओर निगाह रखब जरूरी होला, काहे कि देखा अब ये समय जौन मौसम चल रहा बा उ देखा न्यूनतम तापमान जौन बा कि 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस बा। ये हिसाब से हम लोगों के अपन खेती बाड़ी में काम बढ़ोले के बा, काहे कि देखा कबो कबो ऐसा होत बा कहूँ कहूँ जगह पर न तेज धूप हो रहा बा,
0: बिल्कुल
1: कहीं कहीं देखा तेज बरखा बुनी हो रहा बा, ऐसने में उमस भी होत बा, तो हर लोगन के बड़ा सूझबूझ करके अपन काम करे के बा। और एक बात हम और कहल चाहते कि जैसे देखा कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से भी बा कि 1-15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यक के लिए बा, तो एकर भी बात हम लोगन के पंचायती में होई, लेकिन हम तो कहते ही ना कि काहे नहीं पहले देखा इस सरकारी योजना के प्रति अल्पसंख्यक की जान जागरूकता जरूरी बा। तो तौहीद आलम भैया जोन की अध्यापक हन दुद्धी ब्लॉक के दिघुल गांव से, और भोला भैया इनसे बातचीत कैले हन तो चलो सुनल जाए।
0: एकदम सुनल जाए भैया।
2: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के दिघुल गाँव में हमारी मुलाकात श्री तौहीद आलम जी से हो रही है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे सीधे बातचीत होगी। तौहीद आलम जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में स्वागत है, और बताएं क्या क्या हो जा रहा है तौहीद जी इस समय
3: वही बस स्कूल में पढ़ाई लिखाई अच्छा। विद्यालय में इसमें वर्तमान में पढ़ा रहे हैं।
2: अच्छा, कोचिंग वगैरह कराते हैं।
3: जी जी जी।
2: तो अनेक पढ़ाई लिखाई हुई है, कितना तक पढ़ाई किए हैं आप?
3: हम बीएड किए हैं।
2: अच्छा, तो अच्छी बात है भाई, जो है कि तो पढ़ाई के बारे में तो बड़ा देखा जाता है कि लोग कम ध्यान दे पा रहे हैं गांव में, लेकिन आप बीएड भी कर लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो चूंकि अब बीएड कर चुके हैं तो आपको अच्छा जानकारी होगा, ये प्रधानमंत्री जो अल्पसंख्यक योजना है
3: जी जी,
2: उसके बारे में क्या कुछ जानकारी रखते हैं, कितने योजनाएं उन्होंने चलाया अब तक?
3: हाँ, अल्पसंख्यक द्वारा योजनाएं चलाए गए हैं, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री जो योजनाएं इसके बारे में बताए हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम जो है
2: जी जी,
3: जिसके बारे में हम बता रहे हैं। नंबर पहला है कि एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। दूसरा नंबर है विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
2: जी।
3: तीसरा है उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन। चौथा नंबर है मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण। पांचवा, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति।
2: अच्छा अच्छा।
3: छठवां नंबर जैसे है मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना। अगला नंबर 7 है गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना।
2: अच्छा अच्छा।
3: 8 नंबर है कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। अगला नंबर जैसे है आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धि ऋण सहायता।
2: अच्छा।
3: अगला नंबर जैसे चलाए गए हैं राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती। नेक्स्ट 11 नंबर जैसे है ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन यानी गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार
2: जी जी जी।
3: अगला जैसे 13 नंबर है, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन, सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया जो 15 बात आपने बता दिया
3: जी जी जी
2: जो चलाई जा रही है। लेकिन इसमें एक आपने बात कही तकनीकी शिक्षा के बाद
3: जी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन।
2: चूंकि अब है कि तरह तरह के, आप तो मान लीजिए घर परिवार से जागरूक रहे होंगे, जागरूक आपके घर परिवार के लोग रहे होंगे, तो बीए कराने के बाद आपसे बीएड कराए
3: जी,
2: लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अपने समुदाय में लोग हैं जो कि पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि आर्थिक की तंगी है और ऐसे मतलब है बस्ती की भी, वहाँ की जो है कि लोग उस तरफ रुझान नहीं हो पाती है कि हमको पढ़ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए
3: जी।
2: तो ऐसे लोगों के लिए जो तकनीकी शिक्षा की बात की जा रही
3: जी,
2: है जैसे कौशल विकास योजना
3: जी,
2: तो ये तकनीक शिक्षा क्या है और इसके माध्यम से हम लोग कैसे जो है कि आगे बढ़ सकते हैं
3: जी। हम बता रहे हैं तकनीकी शिक्षा का माध्यम, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन। जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग निम्न श्रेणी के तकनीकी कार्यों में संलग्न है
2: जी जी जी,
3: या दस्तकारी द्वारा अपनी उपजीविका कमाता है, ऐसे लोगों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दिए जाने से उनकी कौशल और उपजीविका क्षमता बढ़ जाएगी।
2: अच्छा अच्छा जैसे मतलब कुछ तो अपना कर रहे हैं लोग
3: जी,
2: जैसे कोई जा करके गाड़ी बनाने लग रहा है और कोई जो है कि अमुक काम कर रहा है, कोई मछली पालन इत्यादि, चाहे किसी भी प्रकार से सिलाई कढ़ाई बुनाई अक्सर करके देखते हैं कि अल्पसंख्यक लोग जो है कि सिलाई कढ़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन अगर उसका जो है कि प्रशिक्षण लेने लोग तो उसका अच्छा जो है कि एक अपना फर्म खोल करके वो जो है कि अपना कार्यक्रम चला
3: हाँ,
2: सकता
3: इससे
2: है,
3: अपना कार्यक्रम चला सकते
2: और
3: हैं
2: और उससे जीविका के अच्छा साधन भी हो जाएगा
3: जी।
2: और क्या कर सकते हैं उसके माध्यम से?
3: इससे सभी नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
2: अच्छा, जो मतलब ये औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण में देखते हैं कि ITI वगैरह भी आता है।
3: हाँ, ITI
2: और तमाम तरह तरह के चीज, जिसे
3: ITI
2: कहा गया है,
3: पॉलिटेक्निक वगैरह,
2: हाँ, तो उसमें जिसे कंप्यूटर शिक्षा भी हो गया और तमाम चीज़ें हैं ऐसे जो उसके माध्यम से भी लोग जो है कि वो जागरूक हो सकते हैं
3: जी।
2: तो ये चलाए जा रहे हैं और क्या हो सकता है?
3: और इनके तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किए जाने वाले मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से कुछ संस्थानों का उन्नयन उसी आधार पर किया जाएगा।
2: तो ये मतलब कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारे जो है कि उन्नत करने के एक मार्ग खुल जाएगा
3: जी।
2: लेकिन तौहीद जी, एक समान बात अगर हम लोग किया जाए तो आखिर जो है कि जो अल्पसंख्यक लोगों के सामने कौन सा ऐसा परेशानी है जो पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि नहीं ले पाते हैं लोग? क्या वो जो है कि वैसा सोच विचार नहीं कर पाते हैं, या गरीबी है, या जो?
3: हाँ हाँ, गरीबी के कारण है और कई लोगों मतलब अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, जैसे अल्पसंख्यक में बहुत पिछड़े हैं वर्ग, अपने खासकर अपने परिवार के लड़कियों लोग को विद्यालय नहीं भेजकर पढ़ाना चाहते हैं, 10 या 12 तक पढ़ाने के बाद उच्च शिक्षा नहीं देना चाहते हैं कि अब लड़की होकर आगे की पढ़ाई क्या करेगी
2: जी जी जी।
3: अधिकतर मतलब अल्पसंख्यक वर्ग में यही रुझान देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, मतलब खासकर लड़कियों को आगे की शिक्षा नहीं देना चाहते
2: नहीं देना चाहते हैं और बहुत तो जो है कि शुरुआती हम लगा देते हैं अपना कि जो है कि काम धाम किसी तरीके
3: जी जी
2: करे कि 2 पैसा हमको मिले है। तो इसमें जो है कि जो चूंकि बातचीत बहुत अच्छी हो रही है तो ऐसे स्थिति में जो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके यहाँ जो रोजगार के कोई साधन नहीं है, इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो चूंकि अब आगे की पढ़ाई करने के लिए जो अगर 8 तक पढ़ ले या हाई स्कूल पढ़ ले तो फिर तो छात्रवृत्ति भी मिलने लगता है लोगों
3: जी।
2: का अब चूंकि ये 8वीं तक के पढ़ाई की बात की जाए यदि तो वहाँ तक तो निःशुल्क शिक्षा है, कपड़ा भी मिलता है, भोजन भी मिलता है दोपहर का, और जो है कि बैग भी मिलेगा और पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं लगना है
3: जी।
2: तो ऐसे में क्या कहना चाहते हैं कि ये भेजना चाहिए पढ़ने के लिए बच्चों को कैसे?
3: हाँ, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, जैसे फिर 10 अगर 10वीं पास कर ले बच्चे तो उनको अलग कई प्रकार के तकनीकी चीज़ें पढ़ाई होती है, ITI वगैरह है कई प्रकार से, तो इससे स्वरोजगार मिल जाता है, कहीं कोई क्षेत्र में अपना जुड़कर बच्चे अपना रोजगार में जुड़ जाते हैं, उनसे उनका रोजी रोटी चलने लगता है।
2: तो निश्चित रूप से बचपना छीनने की जरूरत नहीं है। तौहीद जी, निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, चूंकि गरीबी एक अभिशाप ही है जिसकी वजह से व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, लेकिन क्या गरीब के लिए भी कुछ ऐसा योजना है जिसके माध्यम से लोग उसका सहयोग ले सकता है और आगे बढ़ सकता है क्या?
3: जी है जी, जो हम बता रहे हैं गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना।
2: अच्छा अच्छा,
3: जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं।
2: हाँ।
3: जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य हैं गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: इस योजना के अंतर्गत आर्थिक और भौतिक लक्ष्यों को कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: अगला जैसे है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SSRY के दो मुख्य घटक हैं।
2: अच्छा,
3: पहला घटक जैसे है शहरी स्वरोजगार योजना।
2: अच्छा।
3: दूसरी है शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: जिसे UWEP के नाम से जानते हैं।
2: इन कार्यक्रमों के माध्यम से क्या होता है? जैसे
3: इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई योजना है क्या?
3: हाँ है, जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: और एक टिकाऊ समुदाय व सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करना। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है।
2: अच्छा अच्छा,
3: तथा इन जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है। बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवंटन का निश्चित प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए।
2: अच्छा अच्छा,
3: कुछ समय तक निर्धारित किया जाएगा जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं कर लिया जाता है
2: जी।
3: साथ ही आवंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफी आबादी है।
2: अच्छा, जहाँ काफी आबादी होगी अल्पसंख्यक समुदाय के, उनके यहाँ। तो निश्चित रूप से सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है तौहीद जी कि आप पढ़े लिखे होने की वजह से ये सारी योजनाओं के बारे में जान पा रहे हैं। तो ये दुधी ब्लॉक के देखुल गांव से श्री तौहीद आलम जी थे, आपसे बातचीत हो रही थी कि अल्पसंख्यक के 15 सूत्री योजना क्या है और उनके आगे बढ़ने की क्या कुछ विधि व्यवस्था हो सकती है। निश्चित रूप से आपने अनुभव के आधार पर आपने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, और अगर पढ़ाई लिखाई लोग करें तो निश्चित रूप से हर काम के बारे में जानकारी होगी और उस कार्य के अनुकूल लोग काम करेगा। तो इतनी ऐसी जानकारी के लिए तौहीद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुराओ भैया, देखा हम लोगों के तरफ से भी धन्यवाद बा कहे कि इतना बढ़िया जानकारी हम लोगों के भोला भैया दिवौलन।
0: बिल्कुल।
1: और तौहीद आलम भैया हम लोगों के जानकारी देलन कि सरकारी योजना के प्रति अल्पसंख्यक के जागरूकता जरूरी के तरीके से करे के चाहिए और जागरूकता होले पर का इन लोगों के फायदा बा।
0: बिल्कुल
1: भैया, देखा कोनो काम करे के होला तो जागब जरूरी होला, समझब जरूरी होला और कुल मिलाकर के देखा पढ़ब जरूरी बा।
0: एकदम सही कहत हो बागिलु भैया, और निश्चित रूप से सरकार के जो योजना बा और जो लक्ष्य बा यही बाकी भैया देखा जोन भी कमजोर वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग हवन उन लोगन के भैया देखा आर्थिक सामाजिक स्तर पर के तरह से जोन भाई के उनकर आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे कर जाए और उन लोगन के जोन भी जोन बाकी लेकिन बचवन हवन उनके शिक्षा के तरह से मिल जाए मिले एक पर जोन बाकी सरकार के फोकस हुए। निश्चित रूप से भैया देखा उन लोगन योजना के लाभ उठाई है और आगे बढ़ी है भैया।
1: तो भैया देखा भैया के धन्यवाद दे, लेकिन देखा अपन पंचायती में झूरे झूरे भैया के धन्यवाद नहीं दे जाए। डॉक्टर मन्नू यादव उनके संगतिया भैया के एक कजरी विधा से धन्यवाद दिहल जाए।
0: बिल्कुल भैया, सुनल जाए।

0: बहन को सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का भरोसा भी चाहिए। इस रक्षाबंधन यूपी 112 है हर परिवार के साथ।
1: पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, फायर इमरजेंसी, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, साइबर क्राइम, रेल, हाईवे या किसी भी इमरजेंसी में 112 की फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर।
0: शहर हो या देहात, दिन हो या रात, रखिए अपनों की सुरक्षा का भरोसा।
1: किसी भी आपात स्थिति में फोन उठाइए और 112 मिलाइए। यूपी 112, नंबर 1, सेवाएं अनेक।
0: यूपी 112 द्वारा जनहित में जारी।
2: मुराओ भैया देखा कितना बढ़िया, हम लोगों के डॉक्टर मन्नू यादव और उनका संगतिया भैया के एक कजरी विधा में गीत गौनाई सुने के मिलल।
3: बिल्कुल।
2: और जब भी गीत गौनाई होला तो देखा कुछ न कुछ गीत गौनाई में कुछ संदेश छिपल रहेला।
3: एकदम भैया एकदम।
2: अपन देखा अंचल जौन सोनभद्र बा ओकर बखान देखा अपन गीत गौनाई से कर देलन की हर तरह से अपन अंचल बा हर जगह से बखानल जाला। तो वही तरीके से हम यो कहल जात है की भैया हम लोगन के जब जंगल पहाड़ के इलाका है बा तो हर तरह से हम लोगन के बखान हो रहा बा, तो हम लोग काहे नहीं अपन कुछ बखान कर दे जैसे फल फूल के बाग बगीचा के।
3: हाँ भैया बिल्कुल।
2: तो बाग बगीचा जब हम लोग लगाए तो फल फूल जब हमें ले निकली भैया
3: हाँ।
2: तो देखा ओकर मुनाफा हम लोगों के लेवे खातिर कुछ तौर तरीका अपनावे के पड़ेला कि देखा ज्यादा दिन तक हम लोगों के टिकाऊ रहे, और जब ज्यादा बाजार में मांग बढ़ जाला भैया तो दाम भी देखा ओकर होला, और जब ज्यादा सामान बाजार में आ जाला भैया तो देखा ओकर मूल्य जोन बा कम हो जाला। तो हम लोगन के ऐसन काम करे के चाहिए कि जैसे कि देखा प्रसंस्कृत फल देवे के जोन उचित मूल्य के बात होला
3: हाँ।
2: तो ओके हम लोगन के अपनौले के जरूरत बा, काहे कि देखा ई विधि से हम लोगन के न देखा बर्बादी में कमी होखला, और जोन मजबूरी में हम लोग औने पौने दाम में बेच दहिला
3: तो
2: ऐसे भी बचल जाला, और देखा बेहतर मुनाफा हम लोगन के अगर ये विधि अपना ले तो ऐसे हम लोगन के बेहतर मुनाफा होला और ज्यादा टिकाऊ होखेला।
3: बिल्कुल सही कहत हुआ भगेलू भैया, जोन भी उत्पादन हम लोगन करत है जा चाहे फल होखे सब्जी होखे या जोन बाकी अनाज होखे, अगर हम लोग अपने फल सब्जी और अनाज के भैया देखा एक प्रसंस्करण के माध्यम से ब्रांड के तौर पर अगर बाजार में उतारे तो निश्चित रूप से भैया देखा ओकर बाजार मूल्य जोन बा सीधे जोन बा की दुगुना होला, और ओकर टिकाऊ जोन क्षमता होला वो भी बढ़ेला, और लोग भैया देखा ओके पसंद भी करलन, बाजार में मांग भी बढ़ेला। कोई जरूरी नहीं भैया की नया करेगा बा, जैसे फल अगर बाग बागवानी हम लोगन के अगर हुए तो अगर बैर ही हुए जैसे बैर हम लोगन के भैया देखा अपने जंगल पहाड़ में भी देखे मिलेगा, अगर बैर के भी अगर हम लोगन खेती करत है जा और जोन बाकी बढ़िया जोन बाकी ओकर बीज जो ला करके अगर उत्पादन करत है और ओकर ब्रांडिंग करके भैया देखा अगर हम लोगन मार्केट में भैया देखा पहुंचावत है तो हम लोगन के बैर के ही अच्छा दाम मिले। वही तरह अमरूद बा, वही तरह आम बा, वही तरह भैया देखा साग सब्जी बा, जे दिन भैया देखा अपने उत्पादन के हम लोगन भैया देखा प्रसंस्करण के माध्यम से ब्रांडिंग कर दे निश्चित रूप से भैया देखा आमदनी हम लोगन के दुगुना से भी ज्यादा हो लगे।
2: भैया देखा ओकर कई गो तरीका हो जाला, अब जैसे बैर के बात कहला आंवला के बात लेला, और बैर के देखा बैर तो कच्चा में भी खाइल जात बा, और ओके देखा सुखा देवा भैया तो सुखोले के बाद भी ओकर खटाई

0: बातचीत सुन लिया जाए।
1: एकदम सुनल जाए भैया।
2: सोनभद्र जनपद के दुद्धी ब्लॉक के अंतर्गत कठौंधी गांव से श्री चतुर्गुण जी हैं। आप जो है कि तरह तरह के फलदार वृक्ष का रोपण करवाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या जहां ज़्यादा होती है वहां पे, और उससे किसान अपने खेत में जितने भी फलदार वृक्ष हैं उसका सदुपयोग स्वयं करते हैं और उससे लाभान्वित होकर के अपना जीविकोपार्जन के अच्छा खासा साधन प्राप्त कर पाते हैं। इसको लगाने के लिए, देख रेख के लिए किस प्रकार के क्या क्या योजना है श्री चतुर्गुण जी के माध्यम से ही जाना जाएगा। चतुर्गुण भैया, आपके किसान बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है। सोनभद्र अंचल अक्सर करके आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग जो है कि अपना खेती किसानी पर तो निर्भर रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ व्यवसायिक दृष्टि से अगर ये जो है कि वृक्षारोपण कराना चाहें, और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और अन्य लोग भी, तो इनके लिए क्या क्या कुछ योजनाएं हैं जो आप देखते हैं कि आप बहुत पहले से, कई वर्षों से आपसे मुलाकात होते आ रही है, अब इस बारे में आप बताते हैं कि जो है कि ये पौधरोपण कराना है, तो कैसे लोगों का पौधरोपण कराते हैं?
3: गुरु जी, आपको के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पहले तो हम लोग गांव में जाकर देखते हैं कि एसटी का जनसंख्या सबसे ज़्यादा जहां रहता है।
2: अच्छा, जिस गांव में एसटी ज़्यादा लोग हैं।
3: जी जी, कम से कम 80%।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ,
3: जिस गांव में एसटी लोग हैं
2: जी,
3: उनके यहाँ हम लोग जाकर के पहले बैठक करते हैं।
2: जी जी,
3: उस बैठक में हम लोग बताते हैं कि जहाँ आप लोगों का खराब जमीन है,
2: हाँ हाँ,
3: ऊबड़ खाबड़ जमीन है
2: जी,
3: वहाँ पे आप लोग फलदार पौधा लगाइए
2: जी,
3: और लगाने के बाद 5 साल उसका देख रेख कीजिए।
2: हम्म,
3: और हम लोग भी साथ साथ देख रेख मॉनिटरिंग करते रहेंगे
2: जी,
3: और जो भी उसका दवा है, पानी का व्यवस्था हम लोग सब कराएंगे आप लोगों को।
2: हुँ, हुँ,
3: सिर्फ आप लोगों को उस फल को आप लोगों को लगाना है।
2: अच्छा,
3: और
2: अच्छा,
3: उस
2: अच्छा,
3: एरिया में लगाना है जहाँ पे आप लोगों का अनाज सही ढंग से पैदा नहीं हो पा रहा है।
2: जी जी जी जी,
3: जहाँ पे खाली जमीन है।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: आप लोग 10 बीघा 5 बीघा जितना जो भी हो
2: जी
3: आप लोग लगाइए। उसमें हम लोग जो है आम का पौधा देते हैं, अमरूद का पौधा देते हैं।
2: अच्छा,
3: अच्छे क्वालिटी का हम लोग आम का पौधा देते हैं, जैसे मलका हुआ।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
3: और अनेक इसी तरह से
2: जी जी जी,
3: तो
2: अमरूद भी,
3: अमरूद भी देते हैं, इलाहाबादी टाइप का हम लोग अमरूद देते हैं। हम लोग का ये कलकत्ता से ये पौधा आता है।
2: जी जी जी, तो ये जिसे मान लीजिए 80% लोग लगभग गाँव में अनुसूचित जनजाति के हैं
3: जी जी,
2: तो वहाँ पे बहुत लोग लगवाना चाहें तो कई लोगों को अधिक से अधिक दिया जा सकता है।
3: देखिए, अगर 80% अगर वहाँ के एसटी लोग हैं, सभी तैयार होते हैं, हम सभी को देते हैं 100%।
2: अच्छा,
3: हाँ, 100% हम लोग देंगे
2: जी जी जी
3: उस आदमी को। और हम लोग बताते भी हैं कि जहाँ पे अगर एसटी के बीच में अगर एकाध व्यक्ति, अगर कोई अदर कास्ट का है
2: जी जी जी,
3: तो उस जैसे एससी है,
2: एससी हो गया,
3: तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते क्योंकि उनको भी उसी के तहत हम लोग लगा देते हैं।
2: जी जी जी,
3: लेकिन 80% होनी चाहिए
2: जी
3: वहाँ पे एसटी को।
2: तो इधर हम देखते हैं कि दुधी ब्लॉक के अंतर्गत अब तो जो है कि कोन में भी आ जा रहा है, सुदूर ग्राम है, करहिया और खोखा
3: जी जी,
2: बोधाडी
3: जी,
2: तो क्या उधर भी इसका गुंजाइश?
3: हाँ
2: है क्या?
3: हाँ, क्योंकि हम लोग इस वर्ष 5 गांव लिए हैं
2: जी,
3: अगले साल फिर हम लोग उसका सर्वे करेंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ पे एसटी का ज्यादा मतलब लोकेशन है, जहाँ ज्यादा लोग हैं
2: जी,
3: और जहाँ जो रुचि लेता हो
2: जी, जी
3: हम लोग सबको बताएंगे। हम लोग समझाते हैं पहले,
2: हाँ, हाँ,
3: और समझाने के बाद उनकी लाभ और हानि हम लोग बताते हैं
2: जी,
3: अब तैयार करके इसके बाद वहाँ भी हम लोग शुरू कराएंगे।
2: अच्छा, किसान को क्या क्या करना पड़ता है इसमें?
3: देखिए, किसान को कुछ श्रमदान भी करना पड़ता है। श्रमदान में क्या है कि आप गड्ढा आप लोग खोदिए।
2: अच्छा,
3: और वो भी गड्ढा 3x3 यानी 3 फीट गोलाई में,
2: 3 फीट चौड़ा,
3: नहीं
2: 3 फीट,
3: 3 फीट गहराई में करते।
2: अच्छा अच्छा,
3: हाँ, हाँ, 3 फीट चौड़ैया लेकर के 3 फीट गहरा लेकर
2: जी जी जी,
3: और उसमें हम लोग 25 फीट की दूरी पर लगवाते हैं।
2: अच्छा,
3: हाँ, अब इसलिए हम लोग गड्ढा उतना कराते हैं क्योंकि उतना बड़ा तो खैर पौधा नहीं रहता है, अगर उतना हम लोग नीचे डाल देंगे तो जल्दी विकास नहीं होगा।
2: अच्छा,
3: इसलिए कि पानी जब डलेगा तो वो 3 फीट में जब जाएगा पानी,
2: हाँ हाँ हाँ,
3: तो वो कम से कम 10-15 दिन तक वो बनाए रखेगा,
2: बनाए रखेगा, बिल्कुल बिल्कुल।
3: इसलिए हम लोग उसकी गहराई कराते हैं और दूरी इसलिए हम लोग कराते हैं कि

0: जब बड़ा होगा पौधा, एक पौधा दूसरे पौधे की दूरी 25 फीट की दूरी इसलिए रखा जाता है कि बड़ा होने पर एक में वो सटे ना,
1: जी
0: और
1: जी
0: दूसरी बात उसके नीचे
1: जी
0: आप ट्रैक्टर से हल से जुताई करा सकते हैं आराम से,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके नीचे आप खेती करा सकते हैं।
1: अच्छा
0: और खेती में क्या, जैसे सूरन है, अन्नकंदा है,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: जो चीज है, या आपकी
1: जैसे
0: साग
1: हल्दी
0: सब्जी है,
1: हल्दी हो
0: हल्दी हो
1: गया।
0: गया, या अनेक प्रकार के साग सब्जी उसके नीचे कर सकते हैं, ये
1: अच्छा,
0: चीज उसमें है।
1: मतलब जो छाया में भी हो सके
0: जी,
1: ऐसा।
0: छायादार जितने भी उसमें पौधे लगाना है,
1: जी जी जी
0: फलदार लगाना है, या जो भी लगाना है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: सबसे अच्छा हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जी का खेती कीजिए,
1: जी जी जी जी
0: क्योंकि सब्जी के खेती से उसको पौधे में पानी भी मिल जाएगा,
1: हाँ हाँ कोड़ाई भी होता
0: कोड़ाई
1: रहेगा।
0: निराई भी हो जाएगा, उसकी
1: जी
0: साफ सफाई भी होगा, और उसका विकास होगा, और
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: जल्दी है। इसलिए हम लोग 5 साल तक जो है उसका देख रेख मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और
1: अच्छा
0: 5 साल के बाद
1: जी
0: 6वें साल में
1: हाँ,
0: अपना किसान
1: तो सुपुर्द कर दिया जाएगा।
0: सुपुर्द कर दिया जाएगा, और फल भी आना शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, ये
1: अच्छा
0: बात है।
1: अच्छा वो फिर फल का किसान अपने उपयोग करेगा।
0: जी हाँ, वो किसी को नहीं देना है,
1: हाँ,
0: स्वयं अपना खाए या बेचे,
1: जी जी
0: अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर होता है तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग के पास है।
1: अच्छा
0: हम लोग किसी कंपनी को बुलवा करके
1: जी
0: उसका
1: जी
0: ठेका दे देते हैं, और अच्छे रेट में
1: जी जी जी
0: किसानों को पैसा दिलवा करके फल दे देते हैं,
1: अच्छा
0: अगर वो चाहे तो।
1: नहीं, ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था
0: अगर
1: है,
0: नहीं चाहता है किसान, स्वयं किसान अपना बेचना चाहता है, तो स्वतंत्र है।
1: स्वतंत्र है।
0: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें बहुत जगहों पर जो है कि ये दीमक ज़्यादा लगता है पौधों ग्रह में, जो कि मर जाते हैं लोग,
0: जी जी
1: तो उनसे कैसे इनका बचाव किया जा
0: जी
1: सकता
0: अब
1: है?
0: उसका हम लोग 5 साल तक
1: जी
0: जो भी उसकी समस्या होता है उस पौधों का,
1: जी
0: हम लोग दवा का उपलब्ध कराते हैं, सारी दवाएं का उपलब्ध कराते हैं।
1: जी
0: अगर हम लोग जानकार नहीं होता, एक्सपर्ट हम लोग बुलवाते हैं,
1: अच्छा
0: एक्सपर्ट बुलवा करके उसके पूरा जांच करवा के हम लोग दवा का उपलब्ध कराते हैं।
1: जी जी जी तो इस बार करहिया बोधाड़े में लगना है,
0: जी, इस वर्ष लगना है
1: तो वहाँ लगभग है क्या 80%
0: वहाँ,
1: जैसे कि
0: 80% हम लोगों ने जांच किया है,
1: जी जी
0: सर्वे किया है,
1: जी
0: वहाँ पे 80% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं,
1: जी जी
0: और हम लोगों ने चयन भी कर लिया है,
1: जी जी
0: और पौधा लगना बाकी है, अब खुदाई भी शुरू होने जा रहा है, हो चुका है।
1: जी
0: हाँ, अभी तो डुमरा चकडुमरा में शुरू हो गया है,
1: अच्छा,
0: और इसके बाद अगस्त के अंदर में सारे पौधे हम लोग लगवा के फिट कर देंगे।
1: जी। तो ये बहुत किसान भाई लोग आप लोग से मुलाकात नहीं कर पाए होंगे, और वो लोग भी लगवाना चाह रहे हों, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका
0: जी
1: बात सब लोग सुन रहे हैं।
0: जी देखिए, जो भी लगवाना चाहते हो
1: जी
0: वो ST के लिए है, वो है, और हम लोग नहीं मिलते हैं तो एक दूसरे किसान से मिलकर के वो अपना सूची दे सकते हैं,
1: जी
0: या फिर खबर दे सकते हैं, वो भी अपना खुदाई करा सकते हैं, और फिर अगर घटता है तो फिर हम लोग मंगवा कर उनका भी लगवा सकते हैं।
1: जी जी जी
0: सभी का हम लोग का लक्ष्य है कि कोई न छूटे,
1: जी
0: क्योंकि एरिया गरीब एरिया है, और उनका एक मुख्य साधन हो जाएगा,
1: जी
0: वो फल बेच करके खा करके अपना कम से कम अपने बाल बच्चों को शादी ब्याह में जो हम लोग कर्ज लेते हैं,
1: जी जी
0: लोग
1: जी
0: लेते हैं, वो कम से कम बंद हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब सहयोग की बात है, और साथ साथ हमें लगता है कि जो धरती खाली होने की वजह से जो उसमें सूखापन ज़्यादा हो जाता है,
0: जी
1: तो ये हमें नमी भी बना रहेगा,
0: जी जी जी
1: छाया भी बना रहेगा, और जो मवेशी दो चार आदमी पाले रहता है, आने वाला समय में उनके भी छाया मिले,
0: बिल्कुल
1: जो है
0: बिल्कुल
1: चाहे गर्मी के मौसम में या बरसातों के मौसम में, कब जब कभी भी, तो ये कितना लाभकारी है भैया।
0: गुरु जी, ये बहुत ही अच्छा है। अगर किसान सही ढंग से, अगर जो हम लोग पौधे देते हैं
1: जी
0: वो पौधे का अगर वो सेवा करके 5 साल तक रहे,
1: जी
0: उसका हर तरह से पूरा एक लड़के के बराबर मान के चलिए,
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: कि लड़के लोग तो शादी कर देते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: ये पौधा अलग नहीं होगा,
1: वाह
0: उनकी
1: वाह
0: जिंदगी संवर जाएगी। जो
1: बिल्कुल
0: हम दो सरकार पर आश्रित रहते हैं कि हमको पेंशन दिलवाएं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: अब
1: हाँ
0: वो चक्कर लगाते हैं, कभी प्रधान का चक्कर लगाते हैं, कभी ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, वो
1: जी
0: लगाना बंद हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुधी ब्लॉक के कठौंधी से श्री चतुर्गुण जी थे, और आप जो है कि नवार्ड के माध्यम से संस्था के द्वारा ये समय फलदार वृक्ष बहुत ही बृहद रूप में रोपण करा रहे हैं, और जहाँ अनुसूचित जनजाति के बात है, साथ साथ आस पास पड़ोस में भाई, तो कहना भी है कि अगर जो है कि पड़ोसी की यहाँ पुआ पाकी तो बगल में भी गमक जाई,
0: जी
1: तो
0: जी
1: निश्चित रूप से अगर सब लोग फल खाए पास पड़ोस, तो वही में जौन बाकी अपने लोग भी जो बचे रहेंगे उन लोग के भी लाभ है। तो इतना आप नेक काम करा रहे हैं, और जो है कि चयन करते हुए।

0: हर घर घर पहुंच रहे हैं, हम लोग को भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए किसान भाई लोगों के। इतना अच्छी जानकारी के लिए चतुर्गुण भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मुराव भैया। देखा हम लोगों के तरफ से भी धन्यवाद बा, काहे कि इतना बढ़िया हम लोगों के जानकारी देलन चतुर्गुण भैया और भोला भैया, एकदम फरिया फरिया के पूछोलन कि हम लोगों के तरीके से अपन फलदार वृक्षन के लगावे के बाद सेवा करे के बाद।
2: बिल्कुल निश्चित रूप से भैया, देखा हम लोगन भी अपने जोन बाकी जोन खेती बाड़ी बा ओके बाग बगीचा के भैया देखा शामिल करल जाए, और जोन भी आमदनी बा चाहे फलदार वृक्ष होके ओकरा से ले या भैया देखा लकड़ी के उपयोग में लेकर के ले, तो निश्चित रूप से भैया देखा बाजार भाव के बात आवला तो भैया देखा हम लोगन किसान है जा तो एक आख हम लोगन के भैया देखा बाजार भाव पे भी रहला,
1: काहे
2: और
1: नहीं
2: आज भी भैया देखा बाजार भाव अपन रॉबर्टसन से बाबूलाल मौर्या भैया भेजले हुए।
1: अच्छा
2: और
1: अच्छा
2: आप कहो तो भैया देखा बाची
1: भैया देखा नेकी और पूछ पूछ
2: कुंतल में बा भैया, आलू 1100 से 1200 रुपया कुंतल, प्याज 4000 से 4500 रुपया,
1: अच्छा अच्छा
2: लहसुन 15000 से 16000 रुपया कुंतल, धनिया 8000 से 10000, मिर्चा रले 2000 से 2200 रुपया कुंतल, अदरक 7000 से 8000, परवल 6500 से 7000 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च भैया देखा आज मंडी में नहीं आयल रहले, पालक 1800 से 2000 रुपया कुंतल, मूली 3000 से 3200, करेला 2800 से 3000 रुपया कुंतल, नेनुआ 2000 से 2200 रुपया, लौकी रहले 1200 से 1500 रुपया कुंतल, कुनरू 1800 से 2000 रुपया कुंतल, भिंडी 1000 से 1200, मक्का 1500 से 1600 रुपया कुंतल,
1: अच्छा
2: खीरा
1: अच्छा
2: 1800 से 2000 रुपया कुंतल, कोहड़ी 2000 से 2200 रुपया, बोड़ा रहले 2000 से 2200 रुपया कुंतल, और टमाटर रहले 2200 से 2500 रुपया कुंतल, और फूल गोभी रहले 2500 से 3000 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 2200 से 2500 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहले 200 से 250 रुपया प्रति सैकड़ा। ई रहल भैया देखा अपन रॉबर्टसंस के बाजार भाव जोन की कुंतल में रहले, और बाबूलाल मौर्या भैया भेजलन, और इनके भी जोन बाकी धन्यवाद दिहल जाए काहे कि हमेशा बाजार भाव हम लोगन के भेजत रहलन, और निश्चित रूप से भैया देखा जब बाजार भाव हम लोगन के अपने उत्पादन के बढ़िया मिलेला तो खलिता भी भारी रहला, और जोन बाकी खेती बाड़ी करे में भैया देखा मन भी हम लोगन के बढ़िया लगेला।
1: तो भैया देखा अब बात बद कही हम लोग उनके तो होते रही, लेकिन चलत चलावत कुछ हम किसान पंच भैया लोगों से ही कहल चाहत है कि देखा हम लोगों के हर तरह से अपन स्वास्थ्य के देखब जरूरी होला चाहे कुछ भी हो, तो ये में सबसे एगो गुड़ बात होला कि देखा नशा नशा नाश के जड़ होला, काहे कि भैया देखा नशा से हर तरह से हम लोगों के बर्बादी ही बर्बादी बा। भैया देखा जब आज पंचायती में आवत रहली तो कुछ
2: हाँ।
1: भैया लोगन देखा अपन सड़क डहर के किनारे हो जमावड़ा लगौले रहलन बोतल लेकर के गिलास लेकर के,
2: बिल्कुल
1: तो वो देखा भैया अनपढ़ नहीं रहलन, पढ़ल लिखल भैया लोग नादानी करत हवन, तो उस सबन से पूछल गए तो देखा कहन कि देखा ये हम लोगन के टानिक बा और टानिक ऐसे लेवत है कि हम लोग उनके ताजगी आ जाला, तो देखा ताजगी के साथ साथ बर्बादी भी बा।
2: बिल्कुल भैया ताजगी के बात आवेला तो भैया देखा हम लोगन के जोन बाकी घर में और जोन बाकी बाजार में बहुत से ऐसे जोन बाकी खाद्य पदार्थ हुए जगरा खा करके हम लोगन भैया देखा अच्छा सेहत बना सकीला, चाहे फल के बात होके चाहे सब्जी के बात होके चाहे अनाज के बात होके, अगर हम लोग अच्छा खाए तो अच्छा मन मस्त भी रहे और अच्छा स्वास्थ्य भी रहे, और निश्चित रूप से जहाँ भैया देखा नशा के बात आवेला तो नशा भैया देखा हर तरह से भैया देखा विनाश के जड़ हुए, जौन भी लोग नशा करत हुए उनकर भैया देखा घर के स्थिति आप देखब तो भैया देखा आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से भैया देखा हर तरह से भैया देखा परेशान रहलन, और निश्चित रूप से भैया देखा हम युवा लोगन के भी भैया देखा नशा से दूर रह के चाहिए काहे कि हम लोग भैया देखा अपने देश के भैया देखा कर्णधार है आए वाला भविष्य है, तो निश्चित रूप से भैया देखा एकरा से दूरी पर दूरी बना करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
1: अब ये देखा नशा जब हम करब तो देखा हमारे घर परिवार के बचवा लोगन भी नशा करब शुरू कर दी हैं, तो ऐसे हम लोगन के पहले अपने आप में सुधरे के होला तब जाकर के हम लोग अपन घर परिवार सुधारब, और घर परिवार जब सुधरी भैया तो देखा समाज सुधरी
2: एकदम,
1: कहल गई बा ना कि देखा देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य होला,
2: बिल्कुल
1: तो वही तरीके से देखा देखी ही बचवा लोग सीखे लन, अगर ये सब के हम लोगन के संजोगले के जरूरत बा तो ये सब से दूर रहले के जरूरत बा, और अपन घर परिवार खुशहाल जब रखे के बा तो हम लोगन के नशा से दूर रख ले के
2: बिल्कुल भैया एक ही संकल्प कि नशा से दूरी बना के रखी, और घड़ी की सुई भी कहत बा कि आज के पंचायती यही समेटल जाए तो का कहत हो चल जाए।
1: हाँ,
2: सब पंचन के
1: राम राम, राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत कार्यक्रम। श्रोताओ, आज है आकाशवाणी ओबरा का स्थापना दिवस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आकाशवाणी ओबरा की ओर से आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं। शाम के 6:50 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहला गीत प्यारी बहना फिल्म से, आवाज एस पे बाला सुब्रमण्यम की है।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं इंसानियत के दुश्मन फिल्म का ये गीत।

हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हो रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम लोक गीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं डॉक्टर मन्नू यादव और साथी। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया छप रहिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम। आज कलाकार थे डॉक्टर मन्नू यादव और साथी आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इकोसिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कलाई पर स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर स्नेह जताया। इस स्नेह बंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चियों से संवाद किया और उपहार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित कर आधी आबादी के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद करीब 75 वर्षों तक राज्य में केवल 12% महिलाएं नौकरी या रोजगार से जुड़ी थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा 36% से अधिक हो चुका है।
3: इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई। आजादी के बाद से लेकर 75 वर्ष तक ये मामला थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये संख्या 12% से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है। और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है।
2: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में रिजर्व पुलिस लाइन में महिला पुलिस अधिकारियों और आरक्षियों से राखी बंधवाई। प्रदेश के सभी कारागारों में भी रक्षाबंधन के पर्व पर उत्सव का माहौल रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागार पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर कारागार में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और निरुद्ध महिलाओं से राखी बंधवाई। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए प्रदेश की सभी कारागारों के जेल अधीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
4: पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कारागार में हमारी जो बहने हैं जिनके भाई कारागार में निरुद्ध हैं, यहाँ पर अपने भाई की कलाई पे रक्षाबंधन का धागा बांध करके उनकी सलामती की दुआ मांगने आई हैं। और मैंने देखा यहाँ पर जो कारागार प्रशासन के लोग यहाँ के लोकल स्वयंसेवी संस्था से मिलकर के बड़े पैमाने पे उनके नाश्ते की, खाने की व्यवस्था किया है।
2: वाराणसी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भक्तों ने परंपरागत रूप से बाबा विश्वनाथ को राखी अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगा। प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में निशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा कल मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट।
5: कल से शुरू हुई इस सुविधा के पहले दिन 6 लाख से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया। वहीं महिलाओं के साथ सफर करने वाले 3,22,000 से अधिक सहयात्रियों को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ मिला। परिवहन निगम ने 26 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आज से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की शुरुआत हो गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पात्र महिला यात्री को अपनी उम्र प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। यह व्यवस्था लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना के तहत लागू की गई है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना है जो अपने ज्ञान और कौशल से अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में मददगार साबित हो रहा है।
6: आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जहां हर युवा को अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप सीखने, अवसर पाने, उद्यम करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलता है। हमने पिछले 9 वर्षों में शिक्षा और स्किल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्री तक एक ऐसा व्यापक इकोसिस्टम विकसित किया है जो युवाओं की क्षमता को अवसर, अवसर को रोजगार और आर्थिक समृद्धि में बदलने में सहायक हो सकता है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। अपने लखनऊ प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि कल रक्षा मंत्री बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनेंगे। नेपाल में बाढ़ के बाद बने हालात को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं भारत की ओर से बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की एक्स मिल कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के मध्यम तेज गेंदबाज अयान अकरम को ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ खेले जाने वाले मल्टी डे मैचों के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 के दो मल्टी डे मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेह बंधन कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में महिलाओं को रोजगार में मिल रहा है बराबरी का अवसर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित, कहा राज्य में तैयार हो रहा है शिक्षा और कौशल विकास का इको सिस्टम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में योजना की है अहम भूमिका। और नेपाल के वाल्मीकि गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से महाराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, बाढ़ के खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें की गई तैनात। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
8: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
9: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे घर द्वार फिल्म की रचना, आवाजें थी मनहर उदास, सुरेश वाटकर और मोहम्मद अजीज की। और अब सुनिए धर्म युद्ध फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह अस्थाई और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 118 रूपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 89 रूपए यानी कि 89 रूपीज निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में सत्यमेव जयते फिल्म की ये रचना।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे फरिश्ते फिल्म का ये गीत। आवाजें थी अनुराधा बॉर्डवाल, मोहम्मद अजीज और सुरेश वाटकर के। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले इब्राहिम अश्क की रचना, आवाज अनुराधा पौडवाल की है।

अनुराधा पौडवाल की गाई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सुगम संगीत का कार्यक्रम एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से।

आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: यूपी 112 की ओर से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को रक्षाबंधन की कोटि कोटि शुभकामनाएं।
1: राखी के दिन एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का जो वादा करता है, वही वादा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर यूपी 112 का, जो 2400 घंटे सातों दिन आपकी सुरक्षा में तैनात है।
0: पुलिस सहायता चाहिए या एम्बुलेंस, आगजनी की घटना हो या आ जाए कोई प्राकृतिक आपदा,
1: साइबर सिक्योरिटी का केस हो या मामला हो महिला व बाल संघ अपराध का, शहर हो या देहात, दिन हो या रात, किसी भी आपात स्थिति

0: में फोन उठाएं 112 मिलाएं।
1: लता मंगेशकर की आवाज में बिंदिया चमकेगी फिल्म का ये गीत।

और अब फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं भीष्मा फिल्म का गीत, आवाज कुमार सानू की है।

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहले सुनिए भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह और सुहेल खान की आवाज में ये रचना।

मोहम्मद अजीज के गाए इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद रात 9 बजे से अंग्रेजी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6

0: 7% रही और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में। मोहिनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं।

0: योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: भारत और उज़्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
3: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
4: भारत सरकार ने योजना बनाई है किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800184747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन

0: नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
2: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के विल्वन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम मनोज सिंह राणा विद द न्यूज एट 9। The headlines: India sends third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance to flood-hit Nepal. External Affairs Ministry says 320 Indian nationals remain uncontactable. Death toll in devastating Nepal-Tibet flash floods rises to 547. Over 1,500 people remain missing on both sides of the border. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. Government measures improve market availability of sugar, ensure faster movement. Ex-mill sugar prices fall by around 20%. India's index of industrial production records growth of 6.7% in July this year. And India's Velaval Senthil Kumar to take on Hungary's Balázs Farkas in the final of PSA Budapest Squash Open tonight. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal affected by flash floods as the third flight carrying 10 tons of humanitarian assistance has departed for Kathmandu. External Affairs Minister Dr. H.J. Shankar informed this in a social media post. The minister said that the assistance includes portable generator sets, dignity kits, food packets and water purification tablets. Dr. Jayashankar said that an 11-member team of doctors, paramedics and recce team for tunnel rescue operations is also on board. He also reiterated India's support to Nepal's ongoing relief and rescue efforts. Earlier, India had sent more than 47 tons of emergency relief supplies in two flights. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 547, with 1,545 people still missing as rescue teams search riverbanks and isolated settlements for survivors and bodies swept downstream. Authorities have evacuated more than 800 people from affected districts and issued fresh warnings after a 5.1 magnitude earthquake struck southwestern China, raising fears of further flooding. India has launched a major rescue and relief operation. The Ministry of External Affairs has said that 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding both nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi today, Mr. Jaiswal said that 63 Indian nationals working at the Shuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. He said another 96 Indian nationals who were stranded on the Chinese side have safely crossed into Nepal by land, and efforts are underway to evacuate them. Mr. Jaiswal informed the media that 21 Indian nationals from Tamil Nadu who had reached Kathmandu from the flood-affected area yesterday have arrived in New Delhi this afternoon.
4: 21 Indian nationals who had yesterday arrived in Kathmandu from the area that was affected by this flood. They have today landed in Delhi. These 21 Indian nationals, they are from Tamil Nadu and they arrived by Indigo flight which just landed in Delhi. Yesterday, our ambassador had met them in Kathmandu and inquired about their well-being.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met the group of 21 pilgrims belonging to Tamil Nadu in New Delhi who were rescued from Nepal. Later talking to the media, he thanked the government of Nepal and its army for the rescue efforts.
5: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now, our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today, I spoke in the morning to the Nepal foreign minister. We have given them a range of support offers.
3: On the Chinese side, External Affairs Ministry spokesperson Jaiswal said that around 400 Indian nationals are safe and in contact with their families. He said that the Indian embassy in Beijing is coordinating with local authorities, team leaders and travel agents to facilitate their evacuation. Mr. Jaiswal said that the government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which is working round the clock. He said Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines.
4: Chinese side, we have 400 Indian nationals. They are safe. They have been in touch with their family because phones, etc., I'm told, is working on that side. Our embassy has been in touch with several of them, in fact, with their team leaders and their travel agent. Many of their family members also contacted us through the helpline numbers that our embassy is running right now in Beijing.
3: Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan tomorrow. In the first leg of the trip, Mr. Modi will reach Uzbekistan's capital, Tashkent, tomorrow. During the visit, Prime Minister Modi and President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, will review cooperation in different sectors. More from our correspondent.
6: India and Uzbekistan have relations that go back to ancient history. India was one of the first countries to recognize the state sovereignty of Uzbekistan after the latter's independence. India and Uzbekistan

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। यह है कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है अनपढ़।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

हम बच्चे हिंदुस्तान के। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत प्रीति सागर की आवाज में, और इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं, हमारा अगला प्रसारण होगा आपसे बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आकाशवाणी ओबरा परिवार की ओर से भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, रिश्तों को जोड़ने वाली ये राखी की डोर आज इस मौके पर हमें एक और खूबसूरत रिश्ते की याद दिलाती है, और वो रिश्ता है आपका आकाशवाणी के साथ। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ एहसास के माध्यम से जुड़ा है, और रिश्ते भी तो अपने पन और एहसास की ही भाषा समझते हैं। और देखिए ना, कच्चे डोर से बंधा हर रिश्ता तभी तक मजबूत बना रहता है जब तक उसमें प्यार के, जब तक उसमें अपनेपन के, और जब तक उसमें भावनाओं की मिठास हो। तो चलिए इसे मिठास को साथ लेकर के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। श्रोताओं, आज की म्यूजिक गैलरी में हम साथ बांटने जा रहे हैं कुछ ऐसी फरमाइशें जिनमें गीतों के साथ जुड़ी हैं आपके अपनों की यादें, आपके अपनों की भावनाएं। फिर आइए रक्षाबंधन के इस खास मौके पर रिश्तों की डोर को सुरों के साथ मिला के कुछ और भी मजबूत करते हैं। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का ये पहला गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी चंबल की कसम। इस गीत के लिए हमें मेल किया था गीता मंदिर सेक्टर 8 ओबरा से अंकिता विश्वकर्मा, लव कुमार, विकास कुमार और स्वीटी ने। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं अपनी ईमेल आईडी जिस पर आप हमें मेल करके अपनी पसंद के गीत आकाशवाणी ओबरा के कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में सुन रहे हैं। नोट करें हमारी मेल आईडी। मेल आईडी है akashwaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com।

NIOBRA@gmail.com। श्रोताओं, आज राखी का पर्व निश्चित तौर पर आप सभी को बीते वक्त में जरूर लेकर के गया होगा, जब भाई बहन के बीच न तो मोबाइल होता था न सोशल मीडिया, बस साथ बैठकर हंसना, लड़ना और फिर थोड़ी देर में एक दूसरे को मना लेना ही पूरी दुनिया हो जाती थी। और अब इस अगले गीत में उसी दुनिया को हम याद करते हैं बिहारी बाबू फिल्म के गाने के माध्यम से। इसके लिए हमें मेल किया है ग्राम मातनपुर पोस्ट महाराजपुर जिला आजमगढ़ थाना कंधरा पुल से सुनीता यादव, मंजू यादव, सोनम यादव, रूनम यादव, राहुल और रवि यादव ने। तो चलिए, आप सभी भाई बहनों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं बिहारी बाबू फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और मनहर उदास की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ।

भाई बहन के प्यार से बंधी आज की ये म्यूजिक गैलरी कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से हमें भावुक भी कर रही है, और यही भावुकता ही रिश्तों का नाम है। और अब अगली फरमाइश आप सबकी पसंद है, धमरी छत्तीसगढ़ बनिया पारा से रामचंद्र माखीजा, काफिर सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, प्रदीप कुमार साहू और पूरा माखीजा परिवार। आप सबकी पसंद है मजबूर फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आइए फिर अपने अपनों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसमें भावनाओं की दस्तक भी है, भाई बहन का प्यार भी है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। श्रोताओं, म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से आई इस फरमाइश को, जिसके लिए हमें मेल किया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। आप सबको हम सुनवा रहे हैं वतन के रखवाले फिल्म का ये गीत। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की हैं।

श्रोताओं, वाकई रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं है, ये उस रिश्ते का नाम है जिसमें भाई की कलाई पर बहन का प्यार और बहन के दिल में भाई की सलामती की दुआ बंधी होती है। जिसके लिए हमें मेल किया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। आप सबने सुनना चाहा है राखी का ये बहुत ही मशहूर गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है छोटी बहन।

शिलांग म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम में आपने अपनी पसंद के गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया है akashvaniobra@gmail.com पे, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही मशहूर गीत है, भाई और बहन के प्रेम को आपस में जोड़ता हुआ। और वैसे भी जब बहन राखी बांधती है तो सिर्फ एक धागा नहीं बांधती, उसमें बचपन की शरारतें, साथ बिताए पल और भाई की लंबी उम्र की दुआ भी बांध देती है। तो चलिए इस अगली फरमाइश को सुनते हैं, जिसके लिए हमें मेल आया है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज में बेईमान फिल्म का ये गीत।

और अब चलिए भाई बहन के रिश्तों को बांधते हैं रेशम की डोरी से। साल 1974 की ये फिल्म है जिसमें ये गीत जो अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं इसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने। और रिश्ते की मिठास लिए इस गीत के लिए मेल किया है टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमार थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी और बेबी वामिका और वाणी थांडी। तो चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये बहुत ही प्यारा संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आशीष वर्मा के साथ।

चुका हूँ, आज पर्व का दिन है, खुशी का दिन है, तो चलिए फिर इस माहौल को और भी प्यारा बनाते हैं और इस अगली फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जिसके लिए हमें मेल किया है शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्ध दर्शन और कविता गौड़ ने। आप सबने सुनना चाहा है मृत्युदाता फिल्म का ये बहुत ही एनर्जेटिक गीत, जिसे गाया है दलेर मेहंदी और सुदेश भोसले ने।

श्रोताओं, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वे अपने साथ कुछ यादें, कुछ रिश्ते और कुछ अनकही बातें भी लेकर आते हैं। अगले गीत में कुछ ऐसा ही एहसास है जिसके लिए हमें मेल किया है राज पैलेस भवनाथ बंचन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और इनके घर के सभी सदस्यों ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। आपको सुनवा रहे हैं इजाजत फिल्म की ये रचना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गीत जिस सुनते ही दिल अपने आप कुछ कहने लगता है। शायद इसलिए दिल की बातें हमेशा शब्दों में कहां कही जाती हैं। साजन फिल्म का यह गीत है जिसके लिए हमें मेल किया है ताजपुर देहमा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से नौशाद, महजबी, नुमान, महवीश और जावियन ने। आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं साजन फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, जिसे आप सुन रहे थे आशीष वर्मा के साथ। और श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनिए। हमें ईमेल करिए अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए। मेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए आकाशवाणी ओबरा से। नमस्कार।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्र के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एमएससी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता

0: बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर द्वारा भेजे जा सकते हैं। इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल यह झूठा प्रचार कर रहे हैं। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधि में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज भारत में यूरोपीय संघ के निवर्तमान राजदूत हर्वे डेल्फिन को विदाई दी। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाने में निवर्तमान राजदूत के योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेल्थिन कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकस से खेलेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी उपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।